शकील बदायूनी का ये रचा गीत सुन रहे थे आप फिल्म आन से, जिसे संगीत से सवारा था नौशाद ने। आवाजें शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की थीं।

शिनचिना की बुबला बु इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। पीएल संतोषी की शब्द रचना को संगीत में पिरोया था सी रामचंद्र ने।

सुधा मल्होत्रा के स्वर में अभी आपने सुना दिले नादान फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने और शुरू में पिरोया था गुलाम मोहम्मद ने। इस गीत के साथ ही अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है राहुल देव बर्मन ने।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। और अब सुनते हैं तराना फिल्म का ये गाना, शैलेंद्र सिंह और उषा मंगेशकर की आवाज़ें हैं। तिलक राज थापर का लिखा गीत है और राम लक्ष्मण का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमें रही प्यार के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं वारदात फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर की आवाजों में। रमेश पंत का लिखा गीत है, बप्पी लहरी का संगीत।

0: सावन को आने दो, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यसुदास और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। माया गोविंद की गीत रचना थी और राजकमल का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: हमारा ही प्यार के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनाते हैं कुर्बानी फिल्म का गाना कंचन, मनहर और आनंद की आवाजों में।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में आप सुन रहे थे ये गीत, जिसे लिखा था गौहर कानपुरी ने, धुन बनाई थी सपन जगमोहन ने, फिल्म का नाम था शादी से पहले। इस गीत के साथ ही अब आज का हमें रही प्यार के कार्यक्रम समाप्त होता है। आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और

0: संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4th वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
4: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन

0: की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
2: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
3: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद।

0: राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू, कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट, 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता, हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एडमिशन के दिन आते हैं तो माता पिता का बच्चों पर दबाव बढ़ जाता है। अक्सर माता पिता ये चाहते हैं कि जो विषय वो तय करें बच्चे वही विषय चुनें और आगे की पढ़ाई करें। एक छात्र के जीवन में सबसे मुश्किल समय तब होता है जब उसे अपने आगे के रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, जब उसे अपने लिए खास विषयों का चुनाव करके पढ़ाई की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। और तब अगर माँ बाप के दबाव में फैसला किया तो बच्चों की प्रतिभा इस दबाव और अनचाहे विषय के तले घुटती चली जाती है। हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से अपने करियर के चुनाव के अवसर आखिर कब देंगे?

हर बच्चे में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, किसी न किसी विषय में उसकी दिलचस्पी होती है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा कलाकार हो, बहुत अच्छा अभिनय करता हो, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो, कोई बहुत अच्छा लिखता हो, कोई तकनीक में बहुत अच्छा हो। जाहिर है कि हर बच्चे के भीतर छिपे प्रतिभा के इन बीजों को सही तरीके से पोषित करना अनिवार्य होता है। लेकिन हमारे यहाँ जीवन में ज्यादा पैसे कमाने और ज्यादा प्रभाव और रसूख कमाने पर जोर दिया जाता है। एक जमाना था जब डॉक्टर इंजीनियर के सिवा तीसरा करियर नजर ही नहीं आता था। आज भी माँ बाप या परिवार के बुजुर्गों का बच्चों पर दबाव रहता है कि वो कोई ऐसा करियर चुने जिसमें ज्यादा पैसे कमाने के अवसर हों और जिंदगी ज्यादा सुख सुविधाओं में बीते। ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे का मन और उसके सपनों की उड़ान क्या है। अगर बच्चों को आजादी दी जाए अपना करियर खुद चुनने की, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा तरक्की करें।

बहुत ज्यादा दबावों में प्रतिभा का विकास नहीं होता है, बहुत ज्यादा उम्मीदों का बोझ होता है, तब भी कहीं ना कहीं बच्चों की प्रतिभा और उनके मन पर असर पड़ता है। ये ठीक है कि माँ बाप बच्चों की भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक सुविधाजनक जिंदगी बच्चे जिए जिसमें किसी तरह का कोई अभाव ना हो, कोई परेशानियां ना हो, लेकिन बच्चों को ये आज़ादी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने मन से तय करें कि वो अपनी जिंदगी की राहों को किस दिशा में ले जाना पसंद करते हैं। बस माँ बाप को चाहिए कि वो इस दिशा को निर्धारित करने में बच्चों का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर दें और उन्हें एक सही नजरिया प्रदान करें, बच्चों को सही हालात दें आगे बढ़ने के, और फिर देखिए कि वो किस तरह से अपने सपनों की उड़ान भरते हैं।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

चहकते सुबह के साथ एनर्जेटिक मंडे का गुड मॉर्निंग, रूटीन और ट्रैफिक के शोर के बीच सुकून की लहर, सुरीले संगीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म के इस गाने से। डोमिनिक सर्जो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सर्जो की आवाजें हैं। जावेद अख्तर का लिखा गीत है, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: गीत जॉली एलएलबी 2 फिल्म से आपने सुना। जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजें थीं, जुनैद वसी के बोल थे और चिरंतन भट्ट का संगीत था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब सुनते हैं आयुष्मान खुराना और नीति मोहन का गाया हुआ नौटंकी साला फिल्म का गाना।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस अंतराल के पहले आपने सुना था फिल्म लुटेरा का गाना। मोनाली ठाकुर की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजशेखर का लिखा और कृष्णा का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत, जिसे गाया है मोहित चौहान ने। फिल्म का नाम है तनु वेट्स मनु।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह का गाया हुआ सिटी लाइट्स फिल्म का गाना। रश्मि सिंह के बोलों को संगीत से सवारा है जीत गांगुली ने।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब सुनते हैं अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल का गाया हुआ पीकू फिल्म का ये गाना।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं केदारनाथ फिल्म का गाना देव नेगी की आवाज में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये गाना।

सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाज़ों में हंसी तो फंसी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं अजहर फिल्म का गाना अरमान मलिक की आवाज में। रश्मि विराग का लिखा गीत है और अमाल मलिक का संगीत।

डियर जिंदगी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह का गाया हुआ, कौसर मुनीर के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। और लीजिए अब सुनिए लैला मजनू फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह और जॉनिता गांधी की आवाजें हैं, इरशाद कामिल का लिखा गीत जिसे संगीत से सवारा है नीलाद्री कुमार ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल, हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में, आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात ये थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूज़िक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूज़िक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में, मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक पर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पर जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंदा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा। अरे सच्चा

से तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहाँ भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता है ये। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अमर अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने ला के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे, उनके जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये सुदेश भोसले, इन्होंने गाया है आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊँगा, मेरे सारे गाने स्वदेश गाएगा।

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व, पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे, उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई है उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत एक खोज में, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये ना तीनों नाम महाराष्ट्र में काफ़ी लिए जाते हैं, और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है, और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया, उनकी एक कंपनी थी कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज़्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूँगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो

0: भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा सब कुछ, वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था पापा के लिए, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया. बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना, यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते.
1: अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया.
0: हाँ, वो
1: तो किसी भी विषय का जिक्र करें
0: करेक्ट
1: तो वो पेज खुल जाएगा.
0: करेक्ट,
1: वैसे जिसे आज हम क्लिक करते हैं ना.
0: हाँ हाँ, वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन, इस तरह से आप कह सकते हैं.
1: yes.
0: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है. तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो, तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया. पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना ज़रूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए. तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो.
1: एक व्यापक दृष्टिकोण,
0: व्यापक दृष्टिकोण है ऑफ कोर्स. और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है. तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूँ और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूँ. और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी, जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे.
1: बिल्कुल.
0: और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे, तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे. तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ऐसा मैं कहूंगी. जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मेच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था. और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का.

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारत एक कोच की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखो

0: आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है, पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
1: बिल्कुल
0: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसे कुछ चुनिंदा रोल्स है जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी। वो
1: अर्धसत्य जब कामयाब हुई, और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है, मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं,
0: और वो पूरे
1: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे, और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
0: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलेंगे। हाँ,
0: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार इस तरह से था, और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊँ, वहाँ पर प्रीमियर है। तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कहा कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था, और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। तो हमारे बाजू में एक जो दुकान था, मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं, और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है, बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे फोर्स के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजे में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है।
1: अरे
0: उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बंबई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमिजिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी,
0: 1-1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह।
0: फिर
1: वा,
0: एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते,
0: ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे। नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर हम लोग गए अंधेरी में किराए का घर जो था। हाँ। वहां पर तारा पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं नहीं नहीं नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं दे सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं, जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं। हाँ, और रातों रात बंदा स्टार बन जाता है।

0: ज्यादा करेक्ट,
1: और कोने कोने में खबर फैल जाती है, और यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या धमाका हो चुका है।
0: वाह, उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर कस किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था, हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने फोन आ रहे हैं,
0: इतने फोन आने लगे। मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-7 महीना, 1-1 साल फोन आने में लग जाता था, पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी।
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में करता है
0: एक्चुअली तो एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है, कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज्ड टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है।
1: एग्जैक्टली।
0: पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, मैनेजमेंट कैसी करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडरवैल्यू कर रखा है।
1: सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया, नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
1: जब वो बहुत बड़े स्टार
0: बन चुके थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर

0: सड़क आई थिंक, तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग. तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है, एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं. काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं है. पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था और वो प्ले बहुत ज्यादा चला. उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए. पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट. सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: थी, उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी. तो इसलिए उनका वो छूटा. पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो.
1: ओके, सोलो था.
0: सोलो था और पूरा 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर.
1: क्या बात है, क्या बात
0: ये
1: है.
0: 2003-04 की बात कह
1: खुद ही डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं,
1: और
0: नहीं,
1: को दिया?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले.
1: वाह.
0: और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले. सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है. ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है.
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक उनका बस था.
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था. तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वाज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड. उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे. और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी, इसलिए वो नहीं हो पाया.
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
0: बहुत. मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया.
1: वो बड़ी थी और
0: वो बड़ी थी, समझदार थी. क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे. तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है.
1: बिल्कुल.
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है. और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया. तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स 3-3, 4-4 साल तक बुक्ड रहती थी.
1: बिल्कुल.
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा. ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था. और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे. तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयाँ होती थी ना वो मम्मी बनाती थी.
1: अच्छा, तो उससे
0: अंदाजा था शायद पापा आजकल में आने वाले.
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है.
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था. मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ. पापा तो बाहर गाँव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग. हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे. पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स. कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस. और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें

0: में उनका कभी ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली, तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए। और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूँगा। और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, उस समय सैटेलाइट टेलीविज़न आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे अच्छा। ये फिल्में देखनी है, और वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर।
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी।
1: ओके।
0: और हमेशा

0: का एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे
1: अच्छा,
0: ये फिल्में देखनी है,
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर।
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी, और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे। तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे। उस वक्त तो बड़े बड़े कैमरास होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमरास होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वाह
0: में
1: वाह,
0: जहां पर भी वो जाते थे। राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था। तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है, जो पापा ने बनाया हुआ है, उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है
1: वाह,
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं।
1: क्या
0: उसमें
1: बात है,
0: फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स। तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, ये डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना। तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी। तो या तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अवसट है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे। तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को, और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूँ मैं, तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गया, डॉक्टर अनिल अवसट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे
1: वाह
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। तो ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे। तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं गए साथ में।
1: वाह वाह
0: बिल्कुल
1: वाह,
0: बिल्कुल, डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब तो उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी, टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे। और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे। तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह
0: मैं इनके
1: वाह,
0: साथ बैठ के खाऊंगा। तो दादी कहती थी कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा। इसलिए सबको खिलाते थे। और
1: हाँ
0: मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो, पर उनके दोस्त बॉम्बे में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह
0: हाँ,
1: वाह,
0: तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी, इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई होता
0: हमेशा
1: था।
0: कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था, या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता
1: क्या बात
0: था।
1: है, इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा
0: हाँ
1: जल्दी आ जाना, सात समंदर
0: हाँ
1: पार से,
0: श्योर,
1: ये गाना सुनते हैं।

बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते।

0: रहे।
1: करेक्ट. नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे. उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवचट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निळू फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी, और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी.
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं,
1: हाँ,
0: बहुत सारी
1: हाँ,
0: तस्वीरों
1: काफी
0: में
1: सारी
0: कि डॉक्टर
1: तस्वीरें.
0: लागू हैं, नीलू
1: हाँ,
0: फुले हैं, ये
1: ये
0: सब
1: हाँ,
0: साथ
1: सब
0: में दिख रहे
1: हाँ
0: हैं
1: एकदम,
0: जी।
1: क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि. सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी. लगनाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निळू फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो
0: हाँ,
1: एक्ट्रेस,
0: वाह
1: तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था,
0: नाटक करके जो
1: नाटक
0: जिसका
1: करके.
0: जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
1: और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85
0: बाप रे,
1: में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक.
0: क्या बात। एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और
1: दस
0: ज्यादा
1: ज्यादा
0: होगी
1: ही ज्यादा
0: जी।
1: ही तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी. ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से, और डॉक्टर लागू और निळू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ, और उन्होंने, क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब.
0: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते हैं।
1: हाँ हाँ डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड? तो पापा ने कहा जरूर, क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए. और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स, डॉक्टर लागू, निळू फुले, पापा, तनुजा, रोहिणी
0: कमर्शियल सिनेमा
1: हट्टंगड़ी,
0: की इतनी
1: कमर्शियल,
0: बड़ी
1: एग्जैक्टली,
0: एक्ट्रेस।
1: हाँ, ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका, और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे,
0: वाह,
1: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे. सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए, वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे.
0: ये कितना बड़ा मुहिम,
1: बहुत
0: मतलब
1: ही,
0: ये अद्भुत
1: बहुत
0: काम
1: ही.
0: रहा उस जमाने के
1: तो
0: हिसाब से।
1: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है, और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ. इस
0: वाह,
1: तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की, इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे. हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है, मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड, और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया, तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं. तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर, अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे जो बहुत

0: बहुत भाग दौड़ करके वहाँ पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे, इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था। और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था। बॉम्बे में पापा ने पढ़ा और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे, तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया।
1: गजब।
0: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो, तो वो अहमदनगर पहुंच गए। वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे। तो पापा ने कहा ठीक है। उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था, तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए,
1: क्या बात है।
0: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय तक, लेट रिलीज होती थी। उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा
1: बाप
0: किया
1: रे
0: गया
1: बाप,
0: फॉर द म्यूजियम।
1: म्यूजियम।
0: और ये बहुत बड़ी बात है और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज लोगों को अभी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया है। तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज़ को देना चाहिए। तो हम अपनी ज़िंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज हैं जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताज़ी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से वो करते रहे हैं और हमेशा, मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसे मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की ज़रूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो CM साहब को फ़ोन लगा लिया, दिल्ली में फ़ोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया। और इसमें मुझे मजे की बात यह लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप
1: ये
0: अभी
1: क्यों कर
0: इन्हें
1: रहे
0: क्यों
1: हो।
0: दे रहे हो, 10,000 रुपये इन्हें किस लिए दिए। इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात।
1: वाह वाह।
0: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी। जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल एक जैसी थी। और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए। इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है, तो आई एम वेरी लकी दैट
1: क्या
0: वे कि
1: बात।
0: इस घर में मैं
1: बिल्कुल।
0: पैदा हूं।
1: चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है, तो यहां मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता
0: करेक्ट
1: है। वो
0: करेक्ट।
1: बताएं।
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी और मुझे वहां पर फोन आया, प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं। मैंने कहा क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है, तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है ऐसे, क्या मुझे पता ही नहीं था। और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सबके लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट। मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो, मम्मी ने कहा अभी नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ।
1: लो।
0: तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है तो वो वहीं पर थी, तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में, दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे और पानी हफ्ते में एक

0: लगातार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था. इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में. और यहाँ पर बम्बई में, बिकॉज हम बम्बई है तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती. पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे. तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था. तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर. और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है, इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं. पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था. तो इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे. और मीडिया से कॉल आया, बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है. बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे. वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली. तो पापा ने, कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूँ मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है. और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया. तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है वगैरह. वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर हो रही है. तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से. उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का. उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है. पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया. और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे. तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे. तो इसलिए उन्होंने वो इसको दिखाया, देखो पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था. वो किस्सा इस तरह से कुछ हुआ था.
1: और किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहाँ नजर आता है.
0: हाँ, और क्योंकि मेरी दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी. पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे. इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे. तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको पता था,
0: उन्हें बहुत करीब से देखी हुई थी.
1: बिल्कुल.
0: तो इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था.
1: बिल्कुल. यहाँ एक गाना सुनते हैं,
0: sure.
1: दो आंखें 12 हाथ का.
0: हाँ.
1: ए मालिक तेरे बंदे हम.
0: ऑफ कोर्स.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रंग तरंग
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

शंकर महादेवन की आवाज में ये पारंपरिक रचना आप सुन रहे थे। विरुद्ध फिल्म के इस रचना को अजय अतुल ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: इस पारंपरिक गीत को आप सुन रहे थे अदिति सिंह शर्मा और दिव्य कुमार की आवाजों में। सूफी जॉय एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: पद्मश्री पद्मजा पिहानी जोगलेकर की आवाज़ में जिंदगी की जुबान इस एल्बम से गज़ल आपने सुनी, जिसे लिखा संदीप गुप्ता ने और महेश खानोलकर का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शकील आजमी की लिखी ये गजल आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में, तुम बिन टू फिल्म से। इसे हमने लिया अंकित तिवारी का संगीत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। और अगर छाया गीत कल रात आप सुन नहीं पाए हैं तो आज शाम 5 बजे पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। फिलहाल रंग तरंग कार्यक्रम में यह अगला गीत।

तलत अज़ीज़ की आवाज़ में आप सुन रहे थे कतील शिफाई का ये कलाम, और तलत अज़ीज़ ने ही संगीत से सजाए गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एंड गज़ल्स इस एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से ये गीत।

हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, आर किरण के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

नीदा फाजली के बोल आप सुन रहे थे। सुर फिल्म के इस गीत में महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजें, एमएम क्रीम का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रंग तरंग। तो रंग तरंग में ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, नुसरत फतेह अली खां का संगीत, फिल्म कच्चे धागे।

0: के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रीक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत

आरोप फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, माया गोविंद के बोल, भूपेन हजारिका का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं इंदिवर के बोल, सपन जगमोहन के संगीत।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी तो जीलें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि शाम 7:45 पर रोजाना होते हैं नए नए कार्यक्रम। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है उलझन। और कार्यक्रम यादों की महफिल में वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिमान फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: आँखियों के झरोखे से, इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। आँखियों के झरोखों से इस फिल्म से गीत आपने सुना। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या, हर रोज तुम रेडियो

0: सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत, एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, और इसे संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज।

0: मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।
2: क्यूट।

0: अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me please, my name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldie?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh yes! Anthony Gonsalves!
3: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपकी कसम फिल्म से।

आपकी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संकेत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म आन मिलो सजना, सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम करते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट की जाती है जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे संबंधित गीत इस कार्यक्रम में सुनाए जाते हैं और आपको इस टेक्स्ट को पढ़कर अंदाजा लगाना होता है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वो टेक्स्ट तो आपने हमारे फेसबुक पेज पर पढ़ ही लिया है, लेकिन जो इससे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए हम एक बार कार्यक्रम की शुरुआत में टेक्स्ट और या कहें इस इबारत को बता देते हैं। तो आज की इबारत है, ए दिल सुनो मेरी एक बात मानो तुम, तय जो किया तुमने वो सच करने की ठानो तुम, कभी गर राह हो मुश्किल तो खुद को आजमाना तुम, देखा कि ये दिन रात जो वो सपने सजाना तुम, किसी को देखकर धड़को तो फिर मुस्कुराना तुम, तुम्हारा भी तो दिल होगा उसे अपना बनाना तुम, कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। तो ये है आज की इबारत जिस पर संबंधित जो भी गीत हैं इनसे इनके अंदर जो भी शब्द हैं उन शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जाएंगे। हमारे साथियों ने तो बहुत सी बातें लिखकर भेजनी शुरू कर दी हैं और हमारे जो भी साथी जो अब तक हमारे फेसबुक पेज तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए बता दें कि www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं, या अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक अकाउंट के जरिए वहां अगर आप सर्च करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा तो देवनागरी यानी हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज, और इसमें एक ब्लू टिक भी मिलेगा आपको साथ में। यहाँ आपको सुरीला सफर की पोस्ट मिलेगी और भी विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी पोस्ट भी आपको यहाँ नजर आएंगी, और इस सुरीला सफर की पोस्ट पर कमेंट के जरिए आप शामिल हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथियों ने जो बहुत सी बातें लिख भेजी हैं वो क्या है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ और करना चाहता है, ऐसा लगता है कि हम क्यों ना अपने मन की कुछ काम करें, अपने दिल का कुछ काम करें, कहीं घूमने चले जाएं या बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उनसे छुटकारा पा लें किसी तरह से, लेकिन हमारा दिमाग हमें जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और बहुत सा ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसे करने का हमारा दिल नहीं करता। तो आप अपने दिल की सुनते हैं या दिमाग की, और किस तरह से समझाते हैं अपने दिल को, ये सारी बातें आप हम तक भेज सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी दिल की बात मानकर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसे करने के लिए आपके दिमाग ने साफ साफ मना किया हो, तो ये बातें हम तक पहुंचाइए कमेंट के जरिए। तब तक हम कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और किसने इसे लिखा।

दुलारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया, फिल्म का नाम और गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने भी एक समय अपने दिल की आवाज़ को अनसुना कर दिमाग की बात मान ली, उस वक्त लगा कि यही सही है, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस होता है कि कुछ सपने, कुछ खुशियाँ, कुछ अधूरी ख्वाहिशें वहीं पीछे छूट गईं। दिमाग ने मुझे सुरक्षित रास्ता तो दिखाया, लेकिन दिल जिस राह पर चलना चाहता था उसका अफसोस आज भी कहीं ना कहीं बाकी है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि सच्चे दिल की आवाज़ बिल्कुल सुनाई देती है अच्छी तरह से। इस इबारत की दिल छू लेने वाली लाइन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी जो रूट जाओ तो मुझसे मान जाना तुम, ये इस पूरी नज्म की सबसे प्यारी लाइन है। जब इंसान खुद से रूट कर खुद से ही मान जाता है तो उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, ये गाना उन्होंने बताया। और आगे लिखा कि किसी की ज़िंदगी में एक शख्स के आने से पूरी दुनिया बदल जाती है, गीत सच्चे प्यार की उस मासूमियत और शक्ति को दर्शाता है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई आज गुजरात में वट सावित्री का व्रत मनाया जा रहा है और 15 दिन के बाद ये मनाया जाता है बाकी राज्यों की अपेक्षा, ये कह रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी ये त्यौहार आज मनाया जा रहा है, सभी को शुभकामनाएं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि इबारत की आखिरी लाइनें जैसे कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम, ने ये साफ कर दिया कि आज दिल धड़कने के साथ मान मनोवल भी होगा। कभी ये दिन अपनी ज़िंदगी में आए, बहुत बार रूठ जाने पर मनाना पड़ा, इसका आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ा, लेकिन रूठा कोई अपना था, पैसा खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता है। तो भाई क्या है ये पूरा किस्सा, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। अगर आप लिखकर भेजना चाहें तो कमेंट में ज़रूर भेजें। हमारे एक साथी ने एक नज़्म ही लिखी, ए दिल सुनो एक वादा कर लो, जो बोया है उसे फूलों सा सच कर लो, राहों में कांटे आए तो संभल कर चलो, हिम्मत से अपनी हर अंधेरे को रोशन कर लो, किसी की आंखों में जब तुम्हारा अक्स दिखे एक मीठी मुस्कान से उसे अपना कर लो, तुम्हारा भी तो है एक छोटा सा दिल, प्यार की खुशबू से उसे एक घर कर लो, झुंझला कर अगर कभी दूर हो जाओ मायूस ना करो फिर से मान जाओ। वहीं हमारे एक और साथी ने इबारत के अनुरूप कुछ गाने सुझाए हैं, देखते हैं उनकी और हमारी लिस्ट कितनी मिलती है, क्योंकि बहुत से हमारे साथियों ने लिस्ट के में जो इबारत है उसमें से कुछ शब्द चुने हैं और कहा है कि कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं। हालांकि हमें कुछ गीत तो नज़र आ गए हैं जो हमारे लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज का ये कार्यक्रम तो दिल से होकर गुजरेगा, तो कुछ दिल की बातें हो जाए, दिल से बहुत उम्मीदें होती हैं इंसान को, कभी किसी को अपना बनाएगा, कभी किसी का हो जाएगा, कभी किसी की कमजोरी बनेगा, कभी किसी की चाहत बनेगा, एक बेचारा दिल ही है, कभी टूटता है कभी संभलता है, और इस दिल के आगे मजबूर है इंसान। आज भी कितने नादान है दिल समझता ही नहीं, बाद बरसों के उन्हें देखा है तो दुआएं मांग बैठा है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुनना चाहिए।

ये धड़कता हुआ दिल हो या रूठा हुआ या फिर हो टूटा हुआ, दिल तो आखिर दिल ही है। वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें आप लिख भेज रहे हैं, तो हमें ये भी बताइए कि क्या आप जो ठानते हैं वो काम करके ही रहते हैं और किस तरह से करते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है और आपका दिल कौन सा काम करने के लिए नहीं करता। ये सब बातें आप बताइए, तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसने लिखा है ये गीत।

दो दुनी चार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल और हेमंत कुमार का संगीत। तो बिल्कुल सही नाम आपने बताया फिल्म का भी, और इसे गीत को लिखा था गुलजार ने, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी बात कर रहे हैं और अपनी दिल की बातें बता रहे हैं। बहुत से साथियों ने तो कह दिया है कि भाई दिल के नहीं सुनते, दिमाग के सुनते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुने मेरे दिल, एक बात सुनो तुम, सफ़र जो चुना तुमने उसे पूरा करके दिखाना तुम, कभी जो आए अंधेरे तो हौसला बढ़ाना तुम, बुने हैं जो हसरतों के ताने बाने उन्हें हकीकत बनाना तुम, किसी की चाहत में धड़को तो वफा निभाना तुम, कोई अपना सा लगे दुनिया में उसे गले लगाना तुम, कभी जो उदास हो जाओ तो मेरी बाहों में सिमट जाना तुम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ए दिल तेरी हर बात को दिल से अपनाऊंगा मैं, जो ठान लिया है उसे मंजिल तक ले जाऊंगा मैं, राहें चाहे मुश्किल हों हिम्मत न हारूंगा।

chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick. काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल. संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है. मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे. और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार. मन में है ठाना जो अपने लिए, आज उस संकल्प को पूरा कर सजाऊं जीवन का साज. दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास. मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम. वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है. हमारे और साथी ने भारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल के धड़कनों में सपने बसाए हैं, मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाए हैं. राह चाहे कठिन हो साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें. किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना. दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे. सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए. ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए. बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से भी तो भेजिए ताकि कुछ आनंद आए. और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई किसी आप वो कह रहे कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे. और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज टीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं. अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम. इस टोली के आदमी हैं हम, तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा. हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग नहीं नहीं उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती. वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं. तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें. और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं, बताइए किसने लिखा है.

अनुपमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। तो गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहे

0: भाई गीत तो वाकई में तुमने बहुत ही सुंदर सुनाया है। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो कि जुड़ा है फैशन से। बहनों, फैशन केवल पहनावे का नाम नहीं, बल्कि हमारी सोच, व्यक्तित्व और पहचान का एक आईना है। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं और किन रंगों या शैलियों को चुनते हैं, ये सब हमारी भावनाओं, पसंद नापसंद और आत्मविश्वास को भी दर्शाते हैं।
1: और वहीं मनोविज्ञान ये समझने में मदद करता है कि फैशन हमारी भावनाओं, व्यवहार और आत्म छवि को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसलिए फैशन, पहचान, प्रदर्शन और मनोविज्ञान एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए पहलू हैं जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में

0: विश्वास को भी दर्शाते हैं।
1: और वहीं मनोविज्ञान ये समझने में मदद करता है कि फैशन हमारी भावनाओं, व्यवहार और आत्म छवि को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसलिए फैशन, पहचान, प्रदर्शन और मनोविज्ञान एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए पहलू हैं जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बहनों, आइए इसी संदर्भ में सुनते हैं रूपक, फैशन, पहचान, प्रदर्शन और मनोविज्ञान इस विषय पर बात कर रही हैं कंचन पांडे और संगीता कनौजिया। तो आइए सुनते हैं रूपक।

कहा जाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं बसता, वो हमारे आसपास भी सांस लेता है। कभी किसी पुराने मंदिर की नक्काशी में, कभी किसी राजमहल की भव्यता में, और कभी सदियों से प्रचलित हमारे पहनावों में। परिधानों का बदलता स्वरूप हमेशा से ही मनुष्य के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इस आकर्षण से उपजा एक शब्द, फैशन।

फैशन ये शब्द नया नहीं, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फेसियर से हुई, जिसका अर्थ रचना करना या बनाना, टू मेक और डू होता है। समय के साथ यह अर्थ विकसित होकर लैटिन के फैक्टियो अर्थात कुछ करने की प्रक्रिया या निर्माण में बदला, और फिर पुरानी फ्रेंच भाषा के शब्द फिकॉन में बदल गया, जिसका मतलब रूप, आकार या तरीका होता है। मध्ययुगीन फ्रेंच से होते हुए यह शब्द अंग्रेजी भाषा में आया और प्रचलित हुआ शब्द फैशन।

0: आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां न कोई रेल है, न कोई हवाई जहाज, न कोई समय यंत्र, फिर भी हम हजारों वर्षों की दूरी कुछ ही क्षणों में तय करेंगे। ये यात्रा है फैशन के इतिहास की। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक दिन इतिहास और फैशन की मुलाकात हो गई। इतिहास ने मुस्कुराकर पूछा, लोग मुझे पढ़ते हैं, तुम्हें क्यों देखते हैं?
1: फैशन हंस पड़ा और बोला, क्योंकि तुम किताबों में रहते हो और मैं लोगों के जीवन में।
0: इतिहास ने फिर पूछा, क्या तुम सचमुच इतने महत्वपूर्ण हो?
1: फैशन ने जवाब दिया, यदि विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस आदिमानव से मिलवाता हूँ जिसने पहली बार पशु की खाल पहनी थी। फराओं से मिलवाता हूँ जिसने सोने के मुकुट पहनकर अपनी शक्ति दिखाई थी। उस भारतीय कारीगर से मिलवाता हूँ जिसने साड़ी और रेशम को पहचान बनाया था। उस आधुनिक युवक से मिलवाता हूँ जो अपने पहनावे से अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है।

0: इतिहास और फैशन की बातचीत हो ही रही थी कि अचानक समय का पहिया घूमने लगा और फैशन ने इतिहास से कहा,
1: आज हम समय के विशाल रथ पर सवार होकर निकलते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो हमें पाषाण काल की गुफाओं से लेकर 21वीं सदी की डिजिटल दुनिया तक ले जाएगी, जहां हम जानेंगे कि कैसे फैशन ने मानव की पहचान को आकार दिया, कैसे ये प्रदर्शन का माध्यम बना और कैसे इसने मानव मनोविज्ञान को प्रभावित किया।
0: तभी इतिहास ने फैशन का हाथ पकड़ा और कहा, आओ आज मैं तुम्हें मानव सभ्यता की यात्रा पर ले चलता हूँ। कुछ ही क्षणों में वो हजारों वर्ष पीछे पहुंच गए। सामने एक विशाल जंगल था। गुफाओं के बाहर आदि मानव खड़े थे। उनके शरीर पर पशुओं की खाल थी, लेकिन

0: फैशन मुस्कुराया और बोला,
1: ध्यान से देखो, उनके गले में सीपियों की मालाएं हैं, हाथों में हड्डियों के कंगन हैं, शरीर पर रंगों से बनी आकृतियां हैं। यही मेरी पहली झलक है।
0: इतिहास बोला, यही मनुष्य ने पहली बार केवल जीना नहीं बल्कि स्वयं को अलग पहचान देना सीखा।
1: समय आगे बढ़ा। अब सामने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नगर थे। साफ कपड़े, सुव्यवस्थित घर, यहाँ कारीगर मनकों की मालाएं बना रहे थे। महिलाओं ने सुंदर चूड़ियां पहनी थी। फैशन गर्व से बोला, अब मैं केवल शरीर ढकने का साधन नहीं रहा, मैं कला बन चुका हूँ, मैं संस्कृति बन चुका हूँ।
0: इतिहास ने कहा, यही वो सभ्यता थी जहाँ वस्त्रों और आभूषणों ने सामाजिक जीवन को सुंदरता प्रदान की। इसके बाद अब नील नदी के किनारे विशाल पिरामिड दिखाई दे रहे थे। यहाँ एक फराओ स्वर्ण मुकुट पहने खड़ा था। फैशन बोला,
1: यहाँ मैं शक्ति हूँ, यहाँ मैं राज सत्ता की पहचान हूँ। फराओ के वस्त्र देखकर ही लोगों को उसकी प्रतिष्ठा का पता चल जाता है।
0: इसके बाद पहुंचते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, जहां टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच बसे नगर में लोग ऊनी वस्त्र पहने हुए थे। राजा, पुजारी और व्यापारी अलग अलग प्रकार के वस्त्रों में दिखाई दे रहे थे। तब इतिहास बोला, अब फैशन समाज के वर्गों को भी दर्शाने लगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं यूनानी सभ्यता, जहाँ दार्शनिक अपने विचारों में मग्न थे। लोग सरल लेकिन सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। फैशन ने इतिहास से कहा,
1: यहाँ लोगों ने मुझे सिखाया कि सुंदरता केवल चमक दमक में नहीं बल्कि सादगी में भी होती है।
0: समय का पहिया घूमा और अब फैशन और इतिहास रोम में थे, जहाँ सैनिकों की वर्दियाँ अलग थी, सेनेटरों ने अलग वस्त्र पहने थे, यहाँ साधारण नागरिक अलग दिखाई देते थे। इतिहास बोला, यहाँ कपड़े देखकर व्यक्ति की पहचान और पद का पता चल जाता है।
1: इतिहास ने फिर से फैशन का हाथ पकड़ा और दोनों वैदिक और प्राचीन भारत लौट आए। यहाँ ऋषि मुनि साधारण वस्त्रों में थे, राजा भव्य परिधान में थे, महिलाएं साड़ी जैसे परिधान धारण किए हुए थीं।

0: फैशन बोला, भारत ने मुझे केवल पहनावा नहीं माना, यहाँ मैं संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ गया। इसके बाद पहुंचे राजपूत और मुगल काल में, यहाँ राजमहलों की भव्यता दिखाई दे रही थी। राजपूतों की ऊंची पगड़ियाँ, मुगलों के रेशमी वस्त्र, जरी और कढ़ाई की चमक थी। यहाँ फैशन गर्व से बोला, ये मेरा वैभवशाली रूप है।
1: इतिहास बोला, यहाँ पहनावा केवल वस्त्र नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक है। अब समय फिर बदलता है। अब हमारे सामने भारत का स्वतंत्रता संग्राम है। एक साधारण धोती पहने महात्मा गांधी दिखाई देते हैं। यहाँ फैशन भावुक होकर कहता है,
0: आज मैं राजसी वैभव नहीं हूँ, आज मैं स्वतंत्रता का संदेश हूँ। यहाँ खादी केवल कपड़ा

0: समय का चक्र फिर आगे बढ़ता हुआ 20वीं सदी में पहुंचा, जहां रेडियो बज रहा है, सिनेमा घरों में भीड़ है, लोग अपने प्रिय कलाकारों की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं। फैशन मुस्कुराकर कहता है,
1: अब मैं सपनों की दुनिया में प्रवेश कर चुका हूँ।
0: अचानक दृश्य बदलता है और पहुंच जाते हैं 21वीं सदी में। यहाँ मोबाइल स्क्रीन चमक उठती है, सोशल मीडिया पर लाखों तस्वीरें दिखाई देती हैं। फैशन कहता है,
1: अब मैं शरीर पर नहीं डिजिटल दुनिया में भी मौजूद हूँ।
0: इतिहास फैशन से पूछता है, इतने वर्षों की यात्रा के बाद तुम्हें क्या समझ आया फैशन?
1: फैशन मुस्कुराकर उत्तर देता है, समय बदलता है, सभ्यताएं बदलती हैं, वस्त्र बदलते हैं, लेकिन मनुष्य की एक इच्छा कभी नहीं बदलती, अपनी पहचान बनाने की इच्छा।

0: पाषाण काल की गुफाओं से लेकर 21वीं सदी की डिजिटल दुनिया तक फैशन ने मानव सभ्यता के हर युग को देखा है। कभी वो सुरक्षा था, कभी संस्कृति, कभी स्वतंत्रता और आज आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है।
1: इसलिए फैशन केवल कपड़ों की कहानी नहीं, ये मानव सभ्यता की कहानी है। ये पहचान, प्रदर्शन और मनोविज्ञान की कहानी है। फैशन हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने पहनावे और आभूषणों के माध्यम से अपनी संस्कृति, समाज और स्थिति को व्यक्त करता आया है।
0: एक वक्त था जब फ्रांस को आधुनिक फैशन का जन्मस्थान माना गया, विशेष रूप से 17वीं और 18वीं शताब्दी में पेरिस यूरोप का फैशन केंद्र बन गया। यहाँ के राज दरबार, विशेषकर लुइस 14 के समय नए परिधानों और शैलियों का व्यापक प्रभाव पड़ा। बाद में पेरिस के डिजाइनरों ने आधुनिक फैशन उद्योग की नींव रखी।
1: सदियों से फैशन हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने पहनावे और आभूषणों के माध्यम से अपनी संस्कृति, समाज और स्थिति को व्यक्त करता आया है।
0: फैशन पर अपने विचार व्यक्त करती फैशन डिजाइनर संस्कृति द्विवेदी।
2: फैशन सिर्फ कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, यह एक अभिव्यक्ति है हमारे विचारों की, हमारे संस्कृति की और हमारे समय की। हर पहनावा एक कहानी कहता है, कभी परंपरा की, कभी विद्रोह की और कभी बदलाव की। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया था। और आज के युवाओं की बात करें तो स्ट्रीट वेयर, ग्राफिक टी शर्ट्स और एक्सपेरिमेंटल आउटफिट्स ये दर्शाते हैं कि आज का युवा खुलकर खुद को व्यक्त करना चाहता है। फैशन का प्रभाव हर स्तर पर होता है, जैसे कि सामाजिक बदलाव में, लैंगिक पहचान को अभिव्यक्त करने में, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने में और सबसे अहम आत्मविश्वास को बढ़ाने में। एक साधारण साड़ी हो या एक ग्लैमरस गाउन, वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो एक एटीट्यूड है।

पहचान है। आज के डिजिटल युग में फैशन और भी व्यापक हो गया है। रील्स, ब्लॉग्स, रेड कार्पेट लुक्स, फैशन ब्लॉग्स, इन सभी का असर आम लोगों की अलमारी में साफ दिखाई देता है। मशहूर डिजाइनर कोको शनाल की एक लाइन याद आती है, फैशन इज नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन ड्रेसेस ओनली, फैशन इज इन द स्काई, इन द स्ट्रीट, इट्स अबाउट द वे वी लिव। यानी फैशन सिर्फ कपड़ों में नहीं, ये हमारे जीने के तरीके में होता है।

0: भारत में साड़ी, धोती, पगड़ी और कुर्ता केवल वस्त्र नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इसी प्रकार डॉक्टर का कोट, सैनिक की वर्दी भी पहचान का प्रतीक है।
1: समय के साथ फैशन प्रदर्शन का माध्यम भी बन गया। आज सोशल मीडिया के युग में लोग अपने पहनावे और जीवन शैली के माध्यम से स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। फैशन शो, फिल्में और विज्ञापन नए नए ट्रेंड्स को जन्म देते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि फैशन का उद्देश्य केवल दूसरों को प्रभावित करना नहीं बल्कि स्वयं को अभिव्यक्त करना भी है।
0: मनोविज्ञान के अनुसार हमारा पहनावा हमारे आत्मविश्वास और व्यवहार को प्रभावित करता है। जब हम अपने पसंदीदा और आरामदायक कपड़े पहनते हैं तो हम अधिक आत्मविश्वासी, आकर्षक महसूस करते हैं और उसका असर सामने वाले पर भी पड़ता है। दूसरी ओर यदि हम केवल दूसरों की नकल करने या समाज के बदलाव में फैशन अपनाते हैं तो ये तनाव और असंतोष का कारण भी बन सकता है।

0: अभी बहनें सुन रही थीं कंचन पांडे और संगीता कनौजिया से रूपक, फैशन, पहचान, प्रदर्शन और मनोविज्ञान।
1: और दीदी, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं ये बोलूँगी कि भाई बहनें, हमारी जो भारतीय रसोई है उसमें प्याज केवल एक सब्जी नहीं बल्कि स्वाद का एक ऐसा जादू है जो हर व्यंजन को जायका बढ़ा देता है। जब इन्हीं प्याज में सुगंधित मसाले

0: आलू की भरावन भरकर धीमी आंच पर पकाया जाता है तो तैयार होता है मसालेदार भरवा प्याज। हल्के तीखे, खट्टे और मसालेदार स्वाद से भरपूर ये व्यंजन साधारण भोजन को भी खास बना देते हैं। तो दीदी, आप सामग्री नोट कर लें और बहनें आप भी नोट कर लें। तो सामग्री है 8 से 10 छोटे प्याज, 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच सौंफ मोटी वाली,
1: अच्छा।
0: 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और लाल मिर्च जैसे आप खाते हैं, आधा चम्मच छोटा हल्दी पाउडर और अमचूर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला।
1: हल्दी और अमचूर दोनों मिला के आधा चम्मच या अलग अलग आधा
0: नहीं
1: चम्मच?
0: आप हाँ मतलब देखिए, हल्दी तो आप अपने अनुसार डालेंगे, अमचूर आप आधा चम्मच डाल दीजिए खटास के लिए, और गरम मसाला आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, 2-3 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया। अब बनाना इसको बहुत ही आसान है। प्याज को अच्छे से छील कर धो लीजिए और इसके जो प्याज है ऊपर से नहीं नीचे से 4 टांके लगा लीजिए, बस अलग नहीं करिए उसको, वो जुड़े रहें। फिर एक पैन लीजिए, उसमें बेसन को हल्का सुनहरा भून लें, और
1: बिना
0: बेस
1: कुछ डाले क्या ऐसे ही?
0: ऐसे ही बिना कुछ डाले, और बेसन से सारी सामग्री निकाल मिलाएं, उस बेसन में ही मिला लें, जैसे मसाला तैयार किया हुआ। अब इस मसाले को सावधानी से प्याज में भरें। बेसन आपने भूना, जो आपने पूछा ना कि तेल डालना, नहीं, उसको ऐसे ही भूनना है और मसाले मिला लेना है। उसके बाद उसमें सब मिलाने के बाद बस बेसन को भूनना और मसाले आपके जैसे वैसे मिला लीजिए। फिर उसको बहुत अच्छे से प्याज में भरिए ताकि वो अलग ना हो जाए, और उसके बाद आप उसमें तेल डालिए, गरम करिए और उस प्याज को धीमे आंच में फ्राई कर लीजिए, और फिर उसके बाद 10-15 मिनट तक पकाएं, और जब लटपट दीजिए, जब प्याज नरम हो जाए तो बस उसमें धनिया से सजा कर आप बढ़िया से खाइए। और एक चीज़ और बहनों, मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि ये सब्जी तो आपने भरवा प्याज बना लिया, लेकिन इस प्याज को बस आप एक अलग तरीके से भी बना लीजिए। उस प्याज का जब 4 टुकड़ा किया, बस अलग नहीं होना है उसको, बस थोड़े से तेल में, आधे चम्मच तेल या 1 चम्मच जैसे आपको लगे, ज़्यादा कम या खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा तेल डालिए और सारे प्याज को ढक दीजिए, उसी में डाल दीजिए, और बस एक बार धीरे से चलाइए और ढक दीजिए 2 से 3 मिनट तक के लिए। जब खोलेंगे तो हल्का सा वो लगेगा कि बफ गया है, बस उसको निकाल लीजिएगा। फिर आप तेल डालिए, जो मैंने मसाले बताए हैं
1: मिला
0: वो
1: दीजिए।
0: डालिए, नहीं तेल
1: अच्छा
0: डालिए और जीरा डाल दीजिए थोड़ा सा, वो मैं
1: सौंफ,
0: सौंफ नहीं, हींग
1: हींग।
0: जो स्वाद को बढ़ाता है वो डाल
1: अच्छा।
0: दीजिए, और फिर उसके बाद वो जो मसाले हैं वो आप डालिए और धीमी आंच उसको पका दीजिए। जब मसाले पक जाए थोड़ा सा पानी डालिए और नमक डाल दीजिए, जब वो खौल जाए, और बस वो धीरे से वो सारी प्याजी आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद वो
1: अच्छा
0: पक जाएगा, ढक दीजिए, फिर देखिएगा वो बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में, और फिर उसके बाद आप हरा धनिया सजा दीजिए, उसके बाद आप रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ,
1: वाह,
0: बहुत मज़ा आएगा।
1: क्या बात है भाई अनीता। प्याज का भरवा, एक तरह से कहा जाए तो एक प्याज का भरवा बताया और प्याज की सब्जी भी
0: सब्जी
1: बता
0: भी
1: दी, है
0: बता
1: ना?
0: दी। हाँ
1: तो भाई जितना सुनने में आसान लगा शायद बनाने में कठिन लगे, लेकिन स्वाद तो लग रहा है इनके बनाने में ही।
0: नहीं, बनाने में भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल
1: अरे
0: नहीं
1: भाई,
0: है।
1: मसालों का पूरा मिश्रण कैसे तैयार करना है सब, वो सब चीज़ में तो समय लगेगा ही
0: हम जो
1: ना।
0: रोज सब्जी बनाते हैं सब वही मसाले तो हैं, अलग से तो कुछ नहीं है, हमारे किचन में सारे मिल जाते हैं। हर सब्जी के लिए मेहनत करते हैं ना हम, आप तो इस सब्जी के लिए भी मेहनत करिए और उसका फल पाइए, जब कोई
1: बिल्कुल
0: तारीफ करेगा तब।
1: बिल्कुल भाई, तारीफ तो मिलेगी। बहनों आप भी इसे ट्राई करिएगा और स्वाद हमें ज़रूर बताइएगा, और अनीता को थैंक यू भी बोलिएगा क्योंकि इतनी अच्छी इसने रेसिपी बताई। और अनीता भाई, खाने पीने की बातें तो हो गई है ना, और अब हम निखार की बात करें।
0: बिल्कुल, खाने के साथ हमारे चेहरे पर भी तो निखार आनी चाहिए।
1: बिल्कुल भाई, तो प्राकृतिक सौंदर्य की चाह हर किसी को होती है, और इसके लिए महंगे उत्पादों को नहीं बल्कि सही और प्राकृतिक देखभाल की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक फेस मास्क एक ऐसे घरेलू उपाय हैं जो त्वचा को पोषण देने, निखार बढ़ाने और उसे स्वस्थ बढ़ाए रखने के लिए सहायक होते हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे जो घर में हमारी अवेलेबल है, वो है फल, दही, शहद, बेसन, हल्दी, एलोवेरा जैसे प्राकृतिक चीज़ें हैं जो त्वचा की कोमलता और चमक बनाए रखने में मदद करते हैं। नियमित और सही तरीके से उपयोग किए गए प्राकृतिक फेस मास्क त्वचा को भीतर से ताजगी और प्राकृतिक निखार तो प्रदान करते हैं। तो हम बेसन की बात करते हैं, तो बेसन हल्दी से बने फेस मास्क बताते हैं। 2 चम्मच बेसन ले लीजिए, 1 चुटकी हल्दी, 2 चम्मच दही या

0: या गुलाब जल हो तो उसको मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट के बाद उसे धो लें। ये फेस मास्क त्वचा की सफाई करके चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाता है। और दूसरी विधि है, एक चम्मच शहद को एक चम्मच दही में मिलाकर फेस मास्क लगाएं। इसमें कोई तिकड़म नहीं है, बस लगा के 15 मिनट बाद उसे धो दें। इसमें त्वचा में नमी और कोमलता प्रदान करता है। अब आती है एलोवेरा की बारी।
1: इसमें भी कोई तिकड़म नहीं बताइएगा।
0: मेरी कोई भी चीज़ों में तिकड़म नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: एलोवेरा ले लीजिए, मतलब उसके अंदर का जो जूस होता है वो ले लीजिए। और खीरा तो आप सभी के घर में होगा या सलाद में आप लोग खाते ही हैं, तो बस खीरे को घिस के उसका रस निकाल लीजिए, कोई तिकड़म नहीं है। खीरे का रस निकाल कर दोनों को मिला लीजिए और बस चेहरे पर 15 से 20 मिनट लगा लीजिए। फिर नॉर्मल पानी से धो लें। फिर देखिए त्वचा को ठंडक और ताजगी मिलेगी। याद रखिए बहनों, खूबसूरती का असली राज महंगे उत्पाद में नहीं, नियमित देखभाल, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और प्राकृतिक उपायों को अपनाने में है, है ना? तो भाई अब धीरे धीरे समय हो रहा है हमारी अपनी बहनों से विदा लेने का, तो अनीता क्या किया जाए?
1: भाई अपना व्हाट्सएप नंबर बताएंगे तो ताकि वो प्रतिक्रिया जो होती है, प्रतिक्रिया हमारी बहनें हम तक भेजें। और देखिए उनका जो कहना वो सराहना, वही सब हम लोगों के लिए तो एक अच्छा चीज़ है।
0: हाँ तो बहनों, इसके लिए हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताएं, 8004926250। और हमारा ईमेल एड्रेस है grihlakshmipalsang123@gmail.com। तो हमें इजाज़त दे दीजिए शैल और
1: अनीता को,
0: अगली बार और अच्छी जानकारी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए
1: नमस्कार।

0: प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की।

0: रही है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स

0: TIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
1: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन न्यूस्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप

0: ये लिखते हैं कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तारपूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
1: जी।
0: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
1: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर अवनी गुर्जर रियांशी गुर्जर ओजस गुर्जर गुरदीप गुर्जर प्यारी बिटिया मीठी अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने वो लिखते हैं
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस

0: आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
1: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने, वो लिखते हैं।
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं।
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी। इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो। अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे। ठीक,
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: हाँ। नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? हराम, क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
0: चुप्पा
2: अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ है। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश। अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू, चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी। अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो
3: ये देखो ये पेड़।
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़। और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो, चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
3: ध्यान से
1: बेटा। आई
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
1: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो
1: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना।
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़।

0: ढूंढो,
1: क्या
0: ये कौन सा पेड़ है? ना फूल ना फल।
2: पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
1: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ,
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल।
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी, मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
0: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
2: तू समझ गई है?
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
2: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
2: बोल ना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
2: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना

0: ना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 3 बजने गए हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। शाम की सभा में 5 बजे अब से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, हमारे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स। इसके अलावा प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे, नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद। आप सभी नन्ही मुन्ने साथियों का अपने प्रिय कार्यक्रम नन्ही दुनिया लेकर हाजिर हूँ। मैं हूँ आपकी दीदी शैल।
1: और मैं हूँ आपकी दीदी अनीता। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे कार्यक्रम जो हर बच्चे के दिल के बहुत ही करीब है, फिर से सजाओ बस्ता।
0: बच्चों छुट्टियों के सुनहरे दिन अब प्यारी यादें बन चुके हैं। अब फिर से विद्यालय की घंटी गूंजेगी, कक्षाओं में बच्चों की हंसी सुनाई देगी, नई किताबों की खुशबू आएगी और नए सपनों की उड़ान शुरू होगी।
1: वैसे क्या आपने अपना बस्ता तैयार कर लिया है बच्चों? अगर नहीं तो आइए आज हम सब मिलकर अपने बस्ते को सजाते हैं, लेकिन केवल नई किताबों, कॉपियों और पेंसिलों से नहीं, बल्कि अच्छे संस्कारों से, अनुशासन से, समय की पाबंदी से, ईमानदारी से, मेहनत और मुस्कान से भी सजाते हैं।
0: हाँ बच्चों, हमारा बस्ता सिर्फ किताबें उठाने का साधन नहीं है, ये हमारे सपनों का साथी है। इसी बस्ते में वो किताबें रहती हैं जो हमें नई नई बातें सिखाती हैं, दुनिया को समझाना सिखाती हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनने की राह दिखाती हैं।
1: और बच्चों, जब हम अपने बस्ते को साफ सुथरा रखते हैं, समय पर होमवर्क करते हैं, किताबों का सम्मान करते हैं और मन लगा कर पढ़ते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है।
0: बिल्कुल बच्चों, याद रखिए, जिस बच्चे का बस्ता व्यवस्थित होता है उसका मन भी पढ़ाई में अधिक लगता है, और जो सामान की कद्र करता है वो जीवन में हर अवसर में कद्र करना सीख जाता है।
1: तो बच्चों, नया सत्र केवल नई कक्षा में, क्लास में जाने का नाम नहीं है, बल्कि नई आदतें अपनाने का भी अवसर है। इस

0: हम ये संकल्प लें, विद्यालय पर समय पर पहुँचेंगे, बस्ते में केवल ज़रूरी सामान ही रखेंगे, अपनी किताबों और कॉपियों को साफ सुथरा रखेंगे और अपने होमवर्क जो गृह कार्य बोलते हैं वो समय पर पूरा करेंगे और अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे, मित्रों की दोस्तों की अपनी सहायता करेंगे, विद्यालय और घर दोनों जगह अनुशासन का पालन करेंगे और हर रोज कुछ न कुछ नया सीखने का हम प्रयास भी करेंगे।
1: बिल्कुल सही दीदी ने कहा। देखो, किताबें हमें केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती, बल्कि वे हमें अच्छे संस्कार, अच्छी सोच और जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। तो जब भी आप अपना बस्ता कंधे पर रखें, ये सोचें कि आप अपने साथ अपने सपनों, अपनी मेहनत और अपने उज्जवल भविष्य को लेकर चल रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक प्यारा सा संकल्प लें,
0: हम अपने बस्ते को साफ, हमेशा साफ और व्यवस्थित रखेंगे, अपनी किताबों का सम्मान करेंगे, प्रतिदिन मन लगा कर पढ़ाई करेंगे और अपने माता पिता और शिक्षकों का आदर करेंगे, अपने मित्रों के साथ प्रेम और सहयोग का व्यवहार करेंगे और हर दिन कुछ नया सीखेंगे और एक जिम्मेदार, ईमानदार और संस्कारी नागरिक बनने का हम प्रयास भी करेंगे।
1: बिल्कुल इन्हीं प्रेरणादायक शब्दों के साथ आइए उत्साह, उमंग और नई उम्मीदों के साथ अपने कार्यक्रम फिर से सजाओ बस्ता की शुरुआत करें। तो मुस्कुराइए, सीखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आज का हर छोटा कदम आपके सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव है। तो भाई, इतनी अच्छी बातों के साथ अनीता, हम बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं, तो सुना दिया जाए बच्चों को।
0: बिल्कुल।
2: प्यारे बच्चों, मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम सबको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तुम अपनी नानी से, दादी से, मम्मी से कहानी सुनते हो ना? चलो, आज मैं तुम्हें कहानी सुना रही हूँ। कहानी का नाम है सच्चे दोस्त। बच्चों, रामू नाम का एक छोटा सा, प्यारा सा, बहुत समझदार और बहादुर लड़का था। रामू पढ़ने में बहुत तेज था। वो कक्षा 8 में इस साल अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसके पिता शहर में एक सेठ के यहाँ ड्राइवरी का काम करते थे। पिताजी घर आए तो मालूम पड़ा कि रामू जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। पिताजी ने उसे बुलाया, रामू यहाँ आओ। रामू, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने तो बहुत अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की है। रामू ने बोला, पिताजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों, तुम कुछ भी नहीं लोगे? मैं तो तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, मैं इनाम नहीं लूँगा, आप मुझे शहर ले चलिए, यहाँ पर इससे आगे पढ़ने का स्कूल नहीं है, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, पर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारी माँ अकेली रह जाएगी, गांव में खेत हैं, भैंस है, गाय है, सारा काम तुम्हारी माँ को अकेले करना पड़ेगा। रामू उदास हो गया बच्चों, पर उसने कुछ कहा नहीं, वो चुप हो गया। माँ ने रामू का उदास चेहरा देखा तो कहा, आप इसे ले क्यों नहीं जाते हैं? ले जाइए, बच्चे का मन है, पढ़ेगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, अगर तुम सारा काम संभाल लोगी तो मैं इसे ले जाता हूँ। बच्चों, रामू बहुत खुश हो गया, दौड़कर अपने दोस्तों को बताने पहुँचा, सुनो सुनो, मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पढ़ूंगा, मैं शहर देखूंगा। अच्छा, तुम यहाँ से चले जाओगे? हाँ हाँ, मैं कल ही पिताजी के साथ चला जाऊँगा। रामू घर लौट कर आया, तब तक बच्चों उसकी माँ ने शहर ले जाने के लिए मठरी और लड्डू बना दिए। तुम्हें भी अच्छे लगते होंगे ना मठरी लड्डू? तो मठरी लड्डू बना दिए, उसके कपड़े जो थे बैग में रख दिए। सुबह सुबह रामू जब चलने लगा तो उसने माँ के पैर छुए, माँ ने उसे गले लगाया, माँ की आंखों में बच्चों आंसू आ गए। बच्चा जा रहा था ना उसका, तो उसकी आँख में आंसू आ गए। उन्होंने समझाया कि बेटा, वहाँ जा रहे हो पढ़ने के लिए, किसी से झगड़ा मत करना, खूब मन लगा के पढ़ना। रामू ने कहा, हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप कह रही हैं। रामू जब बस में बैठा तो वो सोचने लगा, शहर कैसा होगा, मैंने तो कभी पहले शहर देखा ही नहीं है। है ना बच्चों, तुमने तो शहर देखा है ना, तुमने तो गांव नहीं देखा, पर रामू ने जो है वो कभी भी शहर नहीं देखा था। वो सोच रहा था, मेरा स्कूल वहाँ कैसे होगा, वहाँ कैसे बच्चे होंगे, कैसे पढ़ूंगा मैं, यही सब सोचता रामू जब पहुँच गया तो पिताजी ने कहा, रामू उतरो, अब हम लोग पहुँच गए हैं। रामू उतरकर पिताजी के साथ रिक्शे में बैठ गया और उसने देखा कि शहर में बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत सी मोटर गाड़ी चल रही है। रामू सोचने लगा कि हमारे यहाँ तो जब मेला होता तभी इतनी भीड़ भाड़ होती।

0: सकती है, फिर यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ क्यों है? वो सोचता रहा और रिक्शा जो है घर पहुँच गया। पिताजी ने कहा रामू उतरो, घर आ गया। रामू ने देखा बहुत बड़ा सा बंगला, बड़ा सा गेट लगा है, गेट खुला हुआ था। उसने देखा कि लॉन में हरी हरी घास लगी हुई है, गमलों में रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, कितना सुंदर है। तब तक वहाँ पर माली काका काम कर रहे थे। उन्होंने रामू के पिताजी से कहा रमेश तुम आ गए? हाँ काका पाए लागू, मैं आ गया हूँ। अरे तेरे पीछे कौन छुपा खड़ा है? काका ये मेरा बेटा है, इसका नाम रामू है। गांव में इसके आगे पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं था ना, मैं इसीलिए इसे ले आया। तब तक मालकिन जो सुन रही थी उन्होंने आवाज़ दे के पूछा माली कौन आया है? माता जी रमेश आ गया है। अच्छा अच्छा रमेश घर में सब तुम्हारे ठीक ठाक है ना? हाँ माता जी। ये कौन खड़ा है? माँ माता जी मेरा बच्चा है, इसका नाम रामू है। मैं अब इसे यहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि गांव में आगे पढ़ाई का स्कूल नहीं। बहुत अच्छा किया तुमने इसे ले आए। रामू ने माता जी के पैर छुए और पिता के साथ उनके कमरे में चला गया। पिताजी ने चाय बनाई और फिर उन्होंने मठरी निकाली। पिताजी ने और रामू ने मिलकर मठरी खाई, बड़ा मज़ा आया। उन्होंने कहा देखो बेटा मुझे सेठ जी को लेने जाना है, मैं गाड़ी धोऊंगा और सेठ जी को लेने जाऊंगा। रामू ने कहा अच्छा देखो वो नल लगा हुआ ना, वहाँ जाके तुम नहा लेना। रामू बहुत समझदार था बच्चों, उसने झाड़ू उठाई, कमरे की सफाई करी, अपने बैग से सारे सामान निकाल के अलमारियों में लगाए। उसके बाद उसने चाय के बर्तन धोए और फिर वो नहाने जाने लगा तो पिताजी के कपड़े भी ले गया और कपड़े धोए। इसके बाद रामू आया, उसने चटाई बिछाई और वो सो गया। पिताजी आए, उन्होंने जगाया, उठो बेटा रामू खाना खा लो, मैं खाना लेकर आया हूँ, शाम को हमें माताजी से भी मिलने चलना ना। दोनों ने खाना खाया। शाम हुई, रामू पिताजी के साथ माताजी से मिलने पहुँचा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ तुम इसे ले आए, मेरा बेटा रवि जो है वो अकेला है, उसे भी साथ ही मिल जाएगा। उन्होंने आवाज़ लगाई रवि ओ रवि देख कौन आया है। रवि दौड़ता हुआ आया, उसने देखा रामू ने कि एक सुंदर गोरा चिट्टा लड़का हाथ में गेंद उछालते हुए आया। कौन आया है? देखो ये रामू है, ये तुम्हारे साथ खेलेगा। रवि ने मुंह बनाया और वो चला गया। माताजी ने कहा कि कल ही हम इसका नाम रवि के स्कूल में लिखा। नहीं नहीं माताजी, रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, वो स्कूल बहुत महंगा है, वहाँ मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊँगा। अरे तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ ना, मैं इसका सारा पैसा दूंगी, माताजी ने कहा। दूसरे दिन माताजी रामू को लेकर रवि के स्कूल में पहुँची। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा तो प्रिंसिपल ने कहा कि माताजी देखिए ये बच्चा गांव से आया है, यहाँ के तौर तरीके भाषा नहीं जानता है, ये हिंदी माध्यम से पढ़ के आया है और हमारा स्कूल अंग्रेजी माध्यम का है, अगर ये यहाँ रहेगा तो पढ़ नहीं पाएगा। माताजी ने कहा नहीं आप गलत सोच रही हैं, आप इसका नाम तो लिखिए, बहुत मेहनती बच्चा है, ये मेहनत से पढ़ेगा। मैं कहती हूँ कि अगर ये 3 महीने में बच्चा ना पढ़ पाए तो आप इसका नाम काट दीजिएगा, मैं किसी दूसरे स्कूल में करा लूँगी। माताजी के बहुत कहने पर प्रिंसिपल ने नाम लिख लिया। फिर क्या हुआ बच्चों, रामू को माताजी ने सुंदर सुंदर किताबें कॉपी कपड़े दिलाए। ड्रेस देख के रामू बहुत गदगद हो गया, अगर मेरी माँ होती तो इतनी सुंदर ड्रेस देख के कितनी खुश हो जाती। दूसरे दिन रामू जल्दी जल्दी तैयार हुआ और स्कूल गया। सारे दोस्त रवि के कहने लगे अरे तुम किस जोकर को पकड़ लाए, उसे तो बोलना तक नहीं आता है। उसको बड़ा बुरा लग रहा था। घर आकर उसने कहा कि माँ मैं इसके साथ स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरे दोस्त मेरे मजाक उड़ाते हैं। माँ ने कहा ऐसा नहीं सोचते हैं, सभी बच्चे बराबर होते हैं। रामू बहुत मेहनत से पढ़ रहा था पर वहाँ के टीचर भी सोच रहे थे कि गांव से आया लड़का तो कुछ कर नहीं पाएगा, वो भी ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जब तिमाही परीक्षा आई बच्चों तो रामू के सबसे ज़्यादा नंबर आए। फिर वहाँ पर प्रतियोगिताएँ हुई, कला की हुई, खेलकूद की हुई, रामू ने सब में भाग लिया और सब में प्रथम पाया। सब ने कहा टीचरों ने कि देखो अरे तुम लोग सीखो इससे, ये देखो गांव से आया बच्चा इतनी जल्दी इसने कवर कर लिया, इतनी जल्दी इसने सीख लिया, तुम भी सीखो। अब तो रवि के दोस्त बच्चों और भी चढ़ गए और उसको रामू को रोज़ सताने लगे, कभी बॉक्स निकाल लेते पेंसिल का, कभी टिफ़िन निकाल देते उसका, कभी कॉपी किताब निकाल देते, पर वो जानते हुए भी कभी किसी की शिकायत नहीं करता था।
1: बच्चे अभी सुन रहे थे कहानी सच्चा दोस्त। भाई बच्चों की पुनः प्रसारण कहानी सुनाई गई, उनको अच्छी लगी तो दोबारा सुनाई गई। और ये कहानीकार हैं जो सुना रही थी वो जयश्री श्रीवास्तव दीदी। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, आओ जाने। तो आओ जाने में हम

0: आपको दुनिया के एक ऐसे अद्भुत स्थानों के बारे में बताएंगे बच्चों, जहाँ प्रकृति अपने बिल्कुल अलग-अलग रूप दिखाती है। एक जगह इतनी ठंड होती है कि पानी पल भर में बर्फ बन जाता है, और दूसरी जगह इतनी गर्म रेत होती है कि बस की भाई नंगे पैर चलना हम सबका मुश्किल हो जाता है। तो दुनिया का सबसे ठंडा और ठंडा स्थान होता है अंटार्कटिका।
1: और दुनिया का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यहाँ का तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस का दर्ज किया जा चुका है, और इतनी गर्मी में सड़कें और चट्टानें भी बहुत तप जाती हैं।
0: हाँ, और बच्चों हमारी धरती सचमुच अद्भुत है। कहीं चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, तो कहीं दूर दूर तक तपता हुआ रेगिस्तान। इसलिए हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ताकि हमारी धरती हमेशा सुंदर और सुरक्षित बनी रहे। इस रोचक जानकारी के साथ आज दीदी अपने कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, और बच्चों से कहेंगे कि हम फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बच्चों, जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: नन्हे मुन्ने बच्चे अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में युवाणी कार्यक्रम।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूथ इवनिंग प्रोग्राम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव।
1: और मैं हूं दिव्या द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? सच सच बताइएगा, आज फिर से सुबह जब अलार्म बजा होगा तब आपने उसे स्नूज पर डाल दिया होगा ना?
0: अरे दिव्या, मंडे ब्लूज में तो ये बहुत ही कॉमन है ना। कई लोगों ने तो वीकेंड पर भी डिसाइड कर लिया होगा कि बस यार कल से सीरियस प्रिपरेशन शुरू।
1: एग्जैक्टली। और देखो ना अंजलि, हमारे यूथ के लिए तो एग्जाम सीजन जैसे कभी खत्म ही नहीं होता। एक एग्जाम खत्म हुआ नहीं कि दूसरे की प्रिपरेशन शुरू करने का टाइम आ जाता है।
0: इंडीड। और टू बी वेरी ऑनेस्ट दिव्या, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि वो प्रिपरेशन स्टार्ट करना ही अपने आप में ही एक टास्क होता है ना।
1: बिल्कुल। और वो क्यों अंजलि?
0: वो इसलिए कि अब तुम ही देखो ना, मान लो किसी ना किसी से टॉपिक तो हमको शुरू करना ही है, ठीक है, कोई उठा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि टॉपिक तो सिंपल है मगर उस टॉपिक के लिए 5 बुक्स रिकमेंडेड हैं, 10 PDFs अवेलेबल हैं और वॉच लेटर लिस्ट में 6 वीडियोस पड़े हुए हैं।
1: सो ट्रू। और वो मोटिवेशनल रील वाला वीडियो तुम भूल गई जो बताते हैं कि हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। पहले स्टूडेंट्स कहते थे मटीरियल ही नहीं मिल रहा है और आज कहते हैं मटीरियल इतना मिल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि पढ़ूं क्या।
1: एग्जैक्टली।
0: और फिर शुरू होती है एक इंटरेस्टिंग साइकिल। स्टूडेंट एक वीडियो खोलता है एक टॉपिक समझने के लिए, फिर एक वीडियो के नीचे दूसरा सजेशन आ जाता है, फिर टॉपर स्ट्रैटेजी, फिर 10 mistakes एवरी एस्पिरेंट्स मस्ट अवॉइड और अचानक 2 घंटे निकल जाते हैं।
1: और सबसे फनी बात क्या है अंजलि, पता है? दिन के एंड में लगता है कि आज तो काफी प्रोडक्टिव दिन गया, जबकि असल में ये होता है कि चैप्टर अभी भी पेज नंबर 1 पर अटका होता है।
0: लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं दोस्तों जो मोबाइल को साइड में रखते हैं, बुक खोलते हैं, पेन उठाते हैं और फिर धीरे धीरे टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। शुरू में उन्हें थोड़ा सा लगता है कि हाँ, मतलब प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, लेकिन कुछ दिन बाद वही चीज़ें उन्हें ज़्यादा याद रहने लगती हैं।
1: तो आखिर में सीन क्या है? आज के डिजिटल ज़माने में शॉर्टकट वाला कंटेंट बेटर है या फिर ओल्ड स्कूल बुक्स का चार्म अभी भी बरकरार है? क्या मोबाइल लर्निंग को इजी बना रहा है या कॉन्सेंट्रेशन को चैलेंज कर रहा है?
0: और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आखिर ज़्यादा ज़रूरी क्या है, स्पीड या डीप अंडरस्टैंडिंग?
1: इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले शाम को थोड़ा सा म्यूजिकल बनाते हैं,
0: एक ज़बरदस्त गाना सुनते हैं और फिर गाने के दौरान आप भी सोचिए जब पढ़ने बैठते हैं तो आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है, बुक्स या फ़ोन?

0: वेलकम बैक दोस्तों, और अब वक्त आ गया है आज के टॉपिक से पर्दा उठाने का।
1: आज का टॉपिक है वो सवाल जो हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट और हर स्टडी ग्रुप में कभी ना कभी तो जरूर पूछा जाता है।
0: पढ़ने की सही आदत, मोबाइल या किताबें, क्या ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और डिजिटल लर्निंग फ्यूचर है, या बुक्स आज भी सीरियस लर्निंग की सबसे मजबूत फाउंडेशन है।
1: दिव्या, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सर्वे कराया जाए ना, तो उनमें से एक प्रॉब्लम जरूर होगी। कंटेंट की कमी नहीं है, क्लैरिटी की कमी है।
0: एब्सोल्युटली, पहले एक किताब मिल जाए यही बहुत बड़ी बात होती थी। आज एक टॉपिक सर्च करो तो 50 वीडियोस, 20 पीडीएफ्स और 10 वेबसाइट और 100 ओपिनियन सामने होते हैं।
1: लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, क्या ज्यादा मटेरियल होने का मतलब है ज्यादा लर्निंग भी जरूरी नहीं है? कई बार हम पढ़ाई कम और रिसोर्सेज ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, फिर फ़ोन की गैलरी में स्क्रीनशॉट्स भरे पड़े रहते हैं, पीडीएफ्स पड़े रहते हैं, लेकिन पढ़ा कितना गया, यही असली सवाल है।
0: देखो, मोबाइल पूरी तरीके से गलत नहीं कहा जा सकता उसे। हाँ। अगर कोई गांव में बैठकर भी आज किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है।
1: बिल्कुल, आज एक स्मार्टफोन के जरिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, ई बुक्स, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स तक पहुँच पा रहे हैं। स्वयं, दीक्षा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लर्निंग को काफ़ी एक्सेसिबल बना दिया है।
0: और कई बार कोई मुश्किल टॉपिक जो किताब में समझ में नहीं आ रहा होता है, एक अच्छे टीचर के ऑनलाइन लेक्चर या एआई टूल से उसे आसान बनाया जा सकता है।
1: लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मोबाइल स्टडी पार्टनर से एंटरटेनमेंट मैनेजर बन जाता है।
0: एक नोटिफिकेशन आया, फिर दूसरा, फिर किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया, फिर एक रील आ गई और कॉन्सेंट्रेशन गया छुट्टी पर।
1: इंडीड। अब दोस्तों आते हैं किताबों पर। किताबों की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? किताब आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। किताब ये नहीं कहती आपके लिए एक और रिकमेंडेड चैप्टर।
0: सही बात है, किताबें पढ़ते समय दिमाग एक चीज़ पर फोकस्ड रहता है। आप अंडरलाइन करते हैं, मार्जिन में नोट्स लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हैं और धीरे धीरे टॉपिक दिमाग में बैठने लगता है।
1: दोस्तों, कई एजुकेशनल स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जब बात लंबे और गहरे विषयों को समझने की आती है ना, तो प्रिंटेड टेक्स्ट अक्सर बेटर कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन में हेल्प करते हैं।
0: यानी अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ देखना है बल्कि उसे सिर्फ आसान तरीके से समझना है तो ऑनलाइन कंटेंट ठीक है, लेकिन अगर उसको याद रखना है लंबे समय तक के लिए तो किताबें अभी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
1: अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर कल किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो और उसे चैप्टर पढ़ना हो तो क्या बेटर रहेगा?
0: अगर कॉन्सेप्ट नया है तो किताब, अगर लास्ट मिनट रिवीजन करना है अंजलि तो मोबाइल काफ़ी यूजफुल हो सकता है। शॉर्ट नोट्स, क्विक रिवीजन वीडियोस, फ्लैश कार्ड्स, करंट अफेयर अपडेट्स, इन सब में मोबाइल शानदार है।
1: मतलब बात मोबाइल बनाम किताबों की नहीं है बल्कि मोबाइल और किताबों की है। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन से निकलता है एक सिंपल फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट सीखो किताबों से, रिविजन या एक ओवरव्यू लेना हो तो उसके लिए आप मोबाइल की हेल्प ले सकते हैं।
0: डीप स्टडी करो किताबों से और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करो ऑनलाइन। हैंड रिटन नोट्स बनाओ क्योंकि वो बेहतर तरीके से आपको याद रखने में मदद करेंगे, और अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं।
1: सो क्विक टेक अवे, ऑनलाइन कंटेंट को सप्लीमेंट बनाइए, रिप्लेसमेंट नहीं। टेक्नोलॉजी इज अ ब्रिलियंट टूल, बट टूल कभी लर्नर की जगह नहीं ले सकता।
0: और किताबें सिर्फ पेजेस नहीं होती दोस्तों, वो सोचने, समझने और गहराई से सीखने की आदत बनाती हैं।
1: मोबाइल आपको इन्फो देता है लेकिन किताबें इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में बदलने में हेल्प करती हैं, और यही है स्मार्ट लर्निंग की असली पहचान।

0: लिए कुछ खास लेकर आते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, और आज हम लेकर आए हैं एक वार्ता। वार्ता का विषय है साहित्य की सामाजिक उपादेयता, और वार्ताकार हैं आकांक्षा चौरसिया। आइए सुनते हैं।
1: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते कभी एकाकी नहीं रह सकता और अपनी पूर्णता के लिए नित नए प्रयास करता रहता है। इन्हीं सार्थक प्रयासों का एक रचनात्मक आयाम साहित्य भी है। यह मनुष्य की चिंतनशील वृत्ति के गर्भ से सृजित प्रतिफल है जो भौतिक व आध्यात्मिक दोनों आयामों तक विस्तृत होता है। समाज की चिंतन धारा तथा उससे उपजे निष्कर्षों का सार्थक विश्लेषण और उनके आलोक में समाज की नीति और नियत को दिशा देना ही साहित्य का मुख्य विशेष ध्येय होता है। मनुष्य के समष्टि रूप का नाम ही समाज है और मनुष्य के भाषाबद्ध विचार प्रवाह को साहित्य नाम दिया गया है। अतः साहित्य और समाज का संबंध अन्योन्याश्रित प्रकार का बनता है। टैगोर ने साहित्य को सहित शब्द भाव रूप में देखा है जिसका

नियत को दिशा देना ही साहित्य का मुख्य विशेष ध्येय होता है। मनुष्य के समष्टि रूप का नाम ही समाज है और मनुष्य के भाषाबद्ध विचार प्रवाह को साहित्य नाम दिया गया है। अतः साहित्य और समाज का संबंध अन्योन्याश्रित प्रकार का बनता है। टैगोर ने साहित्य को सहित शब्द भाव रूप में देखा है, जिसका संदर्भ मात्रा भाव भाषा ग्रंथ के मिलन तक ही नहीं अपितु मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, समष्टि के साथ व्यक्ति का और दूर के साथ निकट के अंतरंग मिलन तक विस्तारित है। वर्तमान में साहित्य के अनेक रूप समाज में दिखाई देते हैं। हल्के फुल्के विषय पर टिप्पणी से लेकर गंभीर बिंदुओं के तार्किक विश्लेषण और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के वर्णन से लेकर अतीत की गहराइयों में झांकने का साहस आज का साहित्य बखूबी निभा रहा है। विभिन्न कालजयी ग्रंथों, काव्यकोश, कहानियों, उपन्यास, नाटक, फिल्म, पत्रिकाओं तथा अखबारों इत्यादि के माध्यम से साहित्य स्वयं को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। नाटकों व चलचित्रों ने तो श्रव्य व दृश्य के संयोग से साहित्य की जीवंतता व प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने का काम किया है। कंप्यूटर क्रांति ने तो साहित्य को डिजिटल बनाकर उसकी उपलब्धता, संकेंद्रण तथा सुग्राह्यता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा है, अर्थात साहित्य समाज की वास्तविक दशा को हूबहू चित्रित करता है। जब हम साहित्य में वर्णित किसी घटना को पढ़ते हैं तो उस समय समाज का चित्र हमारी आंखों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। कुछ बुद्धिजीवियों का मत है कि साहित्य की भूमिका समाज के पथ प्रदर्शक की है। वास्तव में साहित्य ये दोनों भूमिकाएं पूर्ण करता है। जहां दर्पण के रूप में वह समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर वह उसके गहन विश्लेषण से उपजे निष्कर्षों के आधार पर समाज को दिशा भी देता है। वस्तुतः समाज को दिशा देने का काम तलवार ने नहीं, कलम ने किया है। समाज के कोने कोने में झांकने तथा उसकी खूबियों विसंगतियों पर सवाल उठाने का साहस एक कलमकार ही कर सकता है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। साहित्य ज्ञान का संचित कोष होता है, जहां समाज के अनुभव विशेष समाहित रहते हैं। इसीलिए साहित्य को समाज का मस्तिष्क भी कहा जाता है। साहित्यकार हरिश्चंद, शिवी, धदीची, नानक, बुद्ध, महावीर, ख्वाजा चिश्ती जैसे चरित्रवान नायकों के माध्यम से समाज को सत्यनिष्ठा, त्याग, दया, प्रेम, करुणा जैसे उदात्त गुणों से परिचित कराता है। कबीर की साहसिक दृष्टि समाज की विसंगतियों आडंबर पर प्रहार करती है। तुलसी का लोकमंगल अशोक, अकबर, गांधी के प्रयासों में समाहित दिखाई देता है। सूर का वात्सल हो, विवेकानंद का दर्शन हो या इकबाल का सारे जहां से अच्छा, सभी समाज के अनुभव विशेष का ही निचोड़ हैं। साहित्य और समाज एक दूसरे पर गहरे अर्थों में प्रभाव डालते हैं। साहित्य समाज को शने शने प्रभावित करता है, किंतु गांधी, कार्ल मार्क्स, रूसो, दांते आदि के साहित्य ने समाज को तीव्र ढंग से प्रभावित किया है। स्वतंत्रता, समानता और आत्मनिर्णय जैसे मूल्यों को साहित्य ने ही समाज में निवेशित किया है। साहित्य की प्रेरणा से समाज अपना रूप बदलता है और नई प्रेरणा प्राप्त करता है। दूसरी तरफ साहित्य का निर्माण समाज की घटनाओं के आधार पर होता है। समाज की घटनाओं में कल्पना का मिश्रण कर साहित्य उसे नए कलेवर में प्रस्तुत करता है, जो नवीन प्रेरक का कार्य करता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न चिंतन की धारा समाज सुधार की महती कार्य भी संपन्न करती है। चाहे भक्तिकालीन साहित्य में समाज के दिखावेपन पर आक्रोश व्यक्त किया हो या भारतेंदु और प्रेमचंद के साहित्य से स्वतंत्रता का भाव पुष्ट हुआ हो, यह सब संभव हुआ उस युग के साहित्य से। साहित्य और समाज की निष्ठता का कारण मानव प्रवृत्तियां हैं, जिसके संकेत माध्यम से दोनों का कार्य आगे बढ़ता है। जब सारे हथियार विफल हो जाते तो निराश समाज को दिशा दिखाने का कार्य साहित्य करता है। जब तोप मुकाबिल ना हो तो अखबार निकालो। साहित्य के अपने कुछ मूल्य भी होते हैं। साहित्य के मूल्यों का निर्धारण उसके ध्येय, उसके विचारों
तथा उसकी प्रभावशीलता के संबंध

0: संबंध में निर्धारित करते हुए सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को संदर्भित किया गया है। सत्य का अनुसंधान, सत्य की प्रस्तुति और उसका लोक कल्याणकारी कलेवर साहित्य की मूल परक विशेषताएं हैं, जिनसे समाज लाभान्वित होता है। स्वयं के तनाव व विकारों के बीच मनुष्य आनंद की खोज में लगा रहता है, अतः साहित्य का सौंदर्य बोध समाज के आनंद पिपासु मनोविज्ञान को तुष्ट करने की भी गुरुतर जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। समाज के निर्माणकारी तत्वों में साहित्य प्रमुख उपादान है। एक ओर समाज से प्रभावित होकर उसकी प्रस्तुति करता है, वहीं दूसरी ओर कल्पना का योग कर नवीन कलेवर में उसमें परिवर्तन का भी प्रयास करता है। साहित्य अपने युग का उद्भास है, वाहक है, इसीलिए वह कालजयी भी है।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका शीर्षक था साहित्य की सामाजिक उपादेयता, और वार्ताकार थी आकांक्षा चौरसिया। हमें उम्मीद है कि ये वार्ता आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन भरी लगी होगी, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये वार्ता आपको किसी एग्ज़ाम में, कहीं पे भी डिबेट में, डिस्कशन में काम आ गई होगी। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, एक सेगमेंट और है आपके लिए, मगर उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, जिंदगी हर किसी को मौके नहीं देती, लेकिन जो लोग हर मुश्किल को मौका बना लेते हैं वही इतिहास रचते हैं। सपने देखने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सपनों के लिए हर दिन संघर्ष करने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं। और जब बात ऐसे लोगों की होती है तो एक नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, मैरी कॉम का।
1: दोस्तों, अब बारी है अपने सेगमेंट प्रेरणा पुंज की, जहां हम बात करते हैं उन व्यक्तित्वों की जिनकी कहानी सिर्फ प्रेरित नहीं करती बल्कि भीतर से एक नई ऊर्जा जगा देती है। आज की हमारी प्रेरणा पुंज जो हैं वो भारत की शान, विश्व मुक्केबाजी की पहचान और करोड़ों युवाओं के लिए आत्मविश्वास का दूसरा नाम है, मैरी कॉम।
0: दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास अच्छे संसाधन हों, बड़ी सुविधाएं हों और हर कदम पर साथ देने वाले लोग हों, लेकिन मैरी कॉम की कहानी इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। उनका जीवन बताता है कि अगर आपके पास मेहनत करने का साहस है, गिरकर उठने का जज्बा है और अपने सपनों पर अटूट विश्वास है तो कोई भी कमी आपको रोक नहीं सकती।
1: मैरी कॉम का जन्म पूर्वोत्तर के भारत में एक साधारण से किसान परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और एक सामान्य सा परिवार था। बचपन में उन्होंने अपने माता पिता के साथ खेतों में काम किया, घर के छोटे बड़े सारे काम संभाले और संघर्षों के बीच अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। शायद उन्हें भी ये पता था कि एक दिन यही साधारण सी लड़की, उन्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं था कि विश्व मंच पर वो एक दिन भारत का तिरंगा लहराएंगी।
0: कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है जो उसकी पूरी दिशा बदल देता है। मैरी कॉम के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने मुक्केबाजी को देखा तो उनके भीतर कुछ बदल गया। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें इसी खेल में आगे बढ़ना है, लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। उस समय लड़कियों का बॉक्सिंग में आना समाज के लिए सामान्य बात नहीं थी।
1: लोगों ने सवाल उठाए, सलाह दी, हतोत्साहित किया, लेकिन मैरी कॉम ने दूसरों की राय से ज्यादा अपनी आवाज पर भरोसा किया।
0: दोस्तों, किसी भी सपने की शुरुआत तालियों से नहीं होती, शुरुआत होती है संघर्ष से। शुरुआत होती है उन दिनों से जब कोई आपकी मेहनत नहीं देखता। मैरी कॉम ने भी ऐसे ही दिन देखे।
1: सीमित संसाधनों में अभ्यास करना, कठिन ट्रेनिंग, चोटें, थकान और फिर अगले दिन उसी जोश के साथ मैदान पे उतरना, यही उनकी पहचान बन गया। बॉक्सिंग केवल मुक्के मारने का खेल नहीं होता दोस्तों,

0: ये खेल सिखाता है कि सही समय पर धैर्य रखना कितना जरूरी है, कब आगे बढ़ना है और कब खुद को संभालना है।
1: और कब पूरे आत्मविश्वास के साथ वार करना है। यही बातें जीवन में भी लागू होती हैं। हर समस्या का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से दिया जा सकता है।
0: धीरे धीरे मैरी कॉम की मेहनत रंग लाने लगी, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जीत मिली, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
1: एक के बाद एक विश्व चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने दुनिया को ये एहसास कराया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कई बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया और अपने शानदार करियर में अनेक पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। लेकिन उनकी कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा अभी बाकी था।
0: शादी के बाद बहुत लोगों ने ये मान लिया कि अब उनका खेल का जो सफर है वो यहीं समाप्त हो गया। फिर वो माँ बनी, जिम्मेदारियाँ बढ़ीं, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि एक महिला अपने सपने और अपने परिवार दोनों को एक साथ लेकर चल सकती है। उन्होंने फिर से अभ्यास शुरू किया, पहले जैसी मेहनत की और एक बार फिर से दुनिया में अपनी ताकत दिखाई।
1: यही वो बात है जो उन्हें लाखों लोगों की प्रेरणा बनाती है। उन्होंने कभी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई।
0: दोस्तों, आज युवा अक्सर जल्दी परिणाम चाहता है, 2 दिन मेहनत करता और तीसरे दिन सफलता मिल जाए ऐसी उम्मीद कर लेता है। लेकिन मैरी कॉम का जीवन ये बताता है कि सफलता एक लंबी यात्रा है, इसमें धैर्य रखना चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास चाहिए।
1: एक बात हमेशा याद रखिए, हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। मैरी कॉम भी हर मुकाबला नहीं जीती, लेकिन उन्होंने हर हार से कुछ नया सीखा। उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें अपनी ताकत में बदल दिया। यही सोच हर इंसान को आगे बढ़ाती है।
0: और सोशल मीडिया के दौर में हम दूसरों की उपलब्धियां देख लेते हैं दोस्तों, और अपनी शुरुआत को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत छिपी होती है। कोई भी इंसान रातों रात महान नहीं बनता। हर चमक के पीछे अनगिनत अंधेरे रातें होती हैं जिनमें उन्हें हम उसे देख तो पाते नहीं है, लेकिन बिना शोर के उसमें मेहनत छिपी होती है।
1: मैरी कॉम हमें ये भी सिखाती हैं कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पदक जीतना नहीं है, असली सफलता अपने डर पर जीत हासिल करना है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक नज़रिया है। अगर आपके सामने सपने बड़े हैं तो रास्ते भी आसान नहीं होंगे।
0: लोग आपको रोकेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपकी क्षमता पर सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर आपका जवाब आपकी मेहनत है तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे। आज जब किसी की बेटी ऐसे हाथ में ग्लव्स लेकर बॉक्सिंग रिंग में उतरती है तो लोग पहले उस पर प्रश्न लगाते हैं, लेकिन जब वही सफलता पाती है तो लोग उसे सराहते हैं।
1: तो कहीं ना कहीं उसमें मैरी कॉम की प्रेरणा भी शामिल होती है। उन्होंने सिर्फ मेडल नहीं जीते, उन्होंने सोच बदली। तो डियर लिसनर्स, याद रखिए, सपने देखने से ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए रोज़ मेहनत करते रहना।
0: किस्मत बदलने से पहले आदतें बदलनी चाहिए। जो इंसान हर दिन खुद पर बेहतर बनाने की कोशिश करता है वही एक दिन पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनता है।
1: तो आइए आज प्रेरणा पुंज में हम मैरी कॉम से ये सीख लें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर मन में विश्वास हो, दिल में जुनून हो और कदमों में मेहनत हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि रास्ते कठिन हो तो घबराइए मत, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ही सुंदर नज़ारे मिलते हैं। मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी राउंड तक लड़ना नहीं छोड़ता।

0: तो दोस्तों इसी के साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, लेकिन उससे पहले हम एक प्रश्नकाल सेगमेंट हमेशा लेकर आते हैं अपने श्रोताओं के लिए। कल का प्रश्न था कि भारत में शून्य का सबसे प्राचीन अभिलेख प्रमाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ है, और उसका उत्तर है ग्वालियर। ग्वालियर फोर्ट में स्थित एक मंदिर के शिलालेख 876 ईस्वी के हैं, जो शून्य के अभिलेख को स्पष्ट अंकन करते हैं।
1: और दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं? इसका जवाब आप हमको दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com पर, और हमारे फ़ोन नंबर 8004926250 पर। और आप इसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे हमें आपका रिव्यू भी दे सकते हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, मिलेंगे आपसे फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव
0: और मुझे यानी दिव्या को दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार।

हमारी युवा श्रोता भी अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रही थी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम हिंदी में समाचार रिले कर रहे हैं। कृपया समाचारों की कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। इसके अलावा आप हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाली शेष और कल की मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। नौ बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों का प्रोग्राम कहकशा। 10:30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में पंडित उमा शंकर का सितार वादन सुनवाया जाएगा। 6:30 मिनट पर ग्रामीण भाइयों के लिए पंचायत घर कार्यक्रम में प्रीतम सिंह और साथी के गाय लोकगीत के अलावा किसान भाई सुनेंगे शिवलाल केसकर से लोकभाषा कविता पाठ। 7:31 मिनट पर हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शशि शेखर पांडे की वार्ता, सोशल मीडिया के दौर में हिंदी भाषा के समक्ष चुनौतियां। 7:45 मिनट पर सुगम संगीत का प्रोग्राम प्रसारित होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार होंगी करिश्मा, इनके स्वर में आपको सुनवाएंगे भजन। 8:00 चित्रपट संगीत का विशेष कार्यक्रम प्रसारित होगा जो कि सुप्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी पर केंद्रित होगा। और 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाली हमारे शेष कार्यक्रमों की। और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं।

सुबह 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विचार बिंदु में 6:30 पर सरोजनी नायडू के विचार प्रसारित किए जाएंगे। सुबह 6:35 पर प्रसारित होने वाले किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज कुमार से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत सुनवाई जाएगी। बातचीत का विषय होगा पशुओं में परजीवी कारण और बचाव। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम रोज की तरह 6:45 पर। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर पीयूष सक्सेना की वार्ता होगी हार्ट वॉल्व की समस्या। बनवारीलाल शर्मा की गई गजलें प्रसारित की जाएंगी कल के सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर। श्रीराम तीर्थमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 और 7:10 पर फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाएं आप सुन सकेंगी। शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर और दिन में 12:15 पर भास्कर दास का बांसुरी वादन सुनवाया जाएगा। दिन में 12:30 पर आपकी फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होगा हेलो फरमाइश और दिन में 1:15 पर हेलो पनघट कार्यक्रम होगा जिसमें विषय होगा हमारा भोजन और पोषण। इस विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। श्रोता अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 तक हमारे फोन नंबर

562 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग दिन में 2:30 पर प्रसारित होगा। कल शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कुंवर सिंह और साथी के गाए लोकगीत सुनवाए जाएंगे। साथ ही युवाणी कार्यक्रम 5:15 पर प्रसारित होगा। कल के इस कार्यक्रम में बातें होंगी करियर से जुड़ी हुई। शाम 6:30 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अम्बरीले करेंगे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मध्य ओवल लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाली आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट के प्रथम सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2026 के मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनाएंगे शाम 6:30 से 7:20 तक, फिर 7:31 से 8:45 तक और अंत में 9:30 से खेल की समाप्ति तक। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

और अब हमारे पास एक दो सूचनाएं हैं जो कि खोई हुई व्यक्तियों से संबंधित हैं। रमेश कुमार, पूरा मुफ्ती प्रयागराज से हमें सूचित करते हैं कि इनकी संबंधी शन्नू, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, कद 5 फीट, इकहरा बदन, ये दिनांक 17 मार्च 2026 से पूरा मुफ्ती से लापता हो गई हैं। शन्नू के विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, गीता देवी, पत्नी राजू पासी, पूरा मुफ्ती प्रयागराज। एक अन्य सूचना, मल्लू, थाना मंझनपुर कौशाम्बी से हमें सूचित करते हैं कि इनकी संबंधी खुशी, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग सांवला है, इकहरा बदन है, ये सलवार सूट पहने हुए हैं और दिनांक 10 मई 2026 से लापता हो गई हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, मल्लू, पुत्र स्वर्गीय भैयालाल, थाना मंझनपुर, और मोबाइल नंबर है 9236736299, यानी 9236736299। अभी आप सुन रहे थे खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है आपके लिए। कल यानी 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाली सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डायटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे के मध्य हमारे फोन नंबर 0532-297-0462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। हम आपको फोन नंबर एक बार फिर बता दें, 0532-297-0462 और 0532-242-3649। इसके अलावा आप अपने प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 यानी

0: 800-492-5050 पर भी भेज सकती हैं। सूचना समाप्त हुई। शिक्षा व्यक्ति में आत्मबल और आत्मविश्वास पैदा करती है। खुद साक्षर बनिए और दूसरों को भी साक्षर बनाने में अपना अमूल्य योगदान कीजिए। हमें यह नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई। आइए सांप्रदायिक सौहार्द का व्रत लें। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने शौर्य पुरस्कारान् प्रायच्छत्। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेयः, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला आदयः च पुरस्कृताः। हरियाणा राजस्थानयोर्मध्ये दशकत्रयेभ्यः विलंबितायाः यमुना जलविभाजन विवादस्य अद्य समाधानं जातम्। सर्वोच्च न्यायालयेन राममंदिर दान प्रकरणस्य कथित वित्तीय अनियमिततायाः न्यायालय निरीक्षण अन्वेषणस्य त्वरा याचिका निराकृता। सीबीएसई इत्यनेन साम्प्रतिकाय दशम वर्गाय त्रिभाषा नीतिः नानिवार्येति घोषिता। सर्वकारः व्यापारस्य सुगमतां प्रावर्धयितुं परिष्कार सूचना तंत्रं प्रवर्तयति। एसआईआर इति स्वस्तनात् देहल्यां समारप्स्यते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकान्तः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने 26,000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षि बलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेयः, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह बंद्रा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह च अतिविशिष्ट सेवा पदकं प्राप्तवन्तः। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्यः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणः च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे 8 राष्ट्रपति भवने रक्षा अलंकरण समारोहे प्रथम चरणस्य शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अफ्रीका देशस्य यात्रायाः तृतीय दिने सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरस्थस्य नवशक्ति विनयगर देवालयं गत्वा प्रार्थनां कृतवान्। सः तत्र भारतीय प्रवासिभिः अपि मिलितवान्। पश्चात् अद्य पीस पार्क इत्यत्र स्थितायाः महात्मा गांधिनः प्रतिमायाः उपरि पुष्पाञ्जलिमपि अर्पितवान्। प्रधानमंत्री सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीयं सफलं भ्रमणं समाप्य भारतं प्रति प्रस्थितवान्। इतः पूर्वञ्च प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य समारोहे भागम् अगृह्णात्, यत्र देशस्य स्वतंत्रतायाः 50 वर्ष पूर्ति समारोहः आयोजितः आसीत्। श्रीमोदी सम्माननीय अतिथि रूपेण उत्सवे भागम् अगृह्णात्। सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी वर्यस्य आमंत्रणे आयोजितेऽस्मिन् भ्रमणे द्वयोः नेत्रोः मध्ये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माणं, समुद्रीय सुरक्षा, रक्षा इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारादिषु विषयेषु विस्तृत रूपेण वार्तालापः अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् अस्ति, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत्

0: तरायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बुधवासरं यावत् अरुणाचलप्रदेशे, असमराज्ये, मेघालये, केरलमराज्ये, माहे प्रदेशे च प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीत्यपि ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं कृतम्। फीफा विश्वचषक क्रीडायाः नॉकआउट इति चरणे संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस नगरे प्रथमायाः नॉकआउट इति स्पर्धायां कनाडा देशः दक्षिण अफ्रीका देशं 1-0 पराजयत्। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडक किदंबी श्रीकांत यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम। का हो रघु भैया, का हाल चाल है?
1: हाँ भैया, राम अवतार। हाल चाल ठीक बाटे भैया। मुला भैया, देखा मौसम जो है?
0: मौसम का बात तो यही है भैया कि देखा हो, अब तो दिनों दिन हम कहें अब सावन आए,
1: हाँ,
0: जुलाई आए, लेकिन बात यह भैया कि अभिन भी जौन है गर्मी कम होवे का नाम नहीं ले रही बाटे।
1: बिल्कुल भैया,
0: है ना, उमस भी बढ़ रही बाटे, तो हमें बचे का जरूरत है।
1: हाँ भैया, हाँ।
0: थोड़ा भैया गर्मी से बचा जाए, अपने बचा जाए, लड़का गदेला के बचावा जाए, जौन अपन पशुधन है उनके बचावा जाए। और रघु भाई एक बात और है।
1: हाँ भैया,
0: देखे में ये आवत है, चाहे अपने गाँव की बात हो चाहे शहर की बात हो, इस समय में ऊर्जा का खपत बहुत ज्यादा हो जाता है।
1: हाँ भैया, हाँ।
0: तो ऊर्जा का खपत अगर ज्यादा हो जाते तो जो विद्युत व्यवस्था है
1: उस
0: पे सीधा प्रभाव पड़त है।
1: बिल्कुल भैया,
0: वो सामान्य जोन है ओकर वितरण ना हो पावत है, काहे से कि लोड ज्यादा बढ़ जाता।
1: हाँ भैया,
0: तो ये सब के खातिर देखा कृषि सिंचाई, क्योंकि तापमान बढ़ रहा बाटे
1: जी,
0: तो बहुत महत्वपूर्ण है भैया ये समय में, जौन विशेषकर हमारे सभी के रबी और खरीफ के बीच का जायद फसल हैं उनके भैया पानी का बहुत जरूरत है।
1: हाँ भैया, हाँ।
0: तो अगर हम कहें कि विद्युत व्यवस्था अगर सुचारू ना भई बाटे तो कृषि सिंचाई में भैया सौर ऊर्जा,
1: हाँ भैया,
0: जौन है ओकर बड़ा महत्व है। सौर ऊर्जा अगर रहत है तो फिर विद्युत व्यवस्था की ओर देखे के नहीं पड़ता है
1: भैया। ये देखा नई तकनीक बाटे है।
0: हाँ,
1: एमें भैया कहा होता है कि बिजली की बचत भी होती है और साथ ही साथ भैया डीजल की बचत होती है।
0: सही बात बाटे। हम कह रघु भाई देखा कृषि सिंचाई में सौर ऊर्जा के बढ़ावा देवे के खातिर अपन भारत सरकार और राज्य सरकार,
1: हाँ भैया,
0: दोनों मिल के पीएम कुसुम योजना
1: अच्छा
0: चलावे बाटे, जोने में के तहत भैया किसान भाइयन के सोलर पंप लगवावे के खातिर 90% तक राशि अनुदानित की जाती
1: है। अच्छा भैया,
0: इससे किसान भाइयन के डीजल और बिजली के खर्च पर पूरी तरह से बचाव हो सकत है। एकर सबसे बड़ी विशेषता जौन है पीएम कुसुम योजना,
1: हाँ भैया,
0: जौन भैया हो सोलर पंप लगावे के खातिर है, तो इमें जाना कि अपने जेब से किसान भाइयन के खाली 10-30% हिस्सा ही देवे के पड़ता है,
1: मतलब यह लागत
0: बाकी
1: कम हो
0: हिस्सा
1: जाते
0: है। केंद्र और राज्य सरकार अनुदान के रूप में
1: अच्छा,
0: देते हैं।
1: अच्छा।
0: और दूसर बात यह है कि सोलर पंप धूप से चलत है, तो ये खातिर भी आपके कोनो बिजली का बिल या लोड शेडिंग जोने के कहा जाता है बिजली कटौती,
1: अच्छा,
0: ये समस्या नहीं झेले के पड़ी। एकरे साथे साथे यदि आप पंप के साथे अतिरिक्त सोलर पैनल लगावत हैं,
1: अच्छा भैया,
0: तो ग्रिड से जुड़ी जोन भी योजना है, उनके माध्यम से आपका उत्पादित अतिरिक्त बिजली जोन है,
1: अच्छा,
0: ओके, बेच के आप मुनाफा भी कमा सकत हैं।
1: हाँ।
0: और किसान भाइयन के जरूरत के हिसाब से 2 किलोवाट से लेके 10 हॉर्स पावर तक,
1: अच्छा,
0: सरफेस असमर्सिबल जोन पंप है, सोलर पंप इस सरकार द्वारा उपलब्ध करावा जाते हैं। तो हम तो किसान भाइयों से यह कहब, यह अरदास

0: है कि भैया जौन अपने खेती किसानी में है सोलर पंप का उपभोग करें और जो पीएम कुसुम योजना है ओकर लाभ उठावें, सोलर पंप के अनुदानित रूप में ले लें।
1: अच्छा।
0: जौन से कि उनकर खेती किसानी का काम एकदम जमा जम रहे।
1: कैसे भैया देखा सोलर पंप लगवाए से किसान भैया आ रहे हैं जो है लागत जो है कम आई, जब लागत कम आई भैया तो आय में वृद्धि हुई, तो भैया बड़ा मुनाफा बांटे में। हम तो कई किसान भैया जरूर लगवाएं और ये योजना के फायदा लें।
0: अब भैया हो देखा एक दूसर बात आवत है

0: आई, जब लागत कम आई भैया तो आय में वृद्धि हुई, तो भैया बड़ा मुनाफा बांटे में। हम तो कई किसान भैया ने जरूर लगवाएं और ये योजना के फायदा लें।
1: अब भैया हो देखा एक दूसर बात आवत है कि खेत पर मेड़,
0: अच्छा अच्छा,
1: और मेड़ पर खेत,
0: बिल्कुल।
1: तो कहे का मतलब ये है भैया कि बरखा बुन्नी में होत का है कि जो उपजाऊ जमीन है हमारे तोरे रमेश्वर के खेत का,
0: हाँ भैया,
1: वो भैया बह जाता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: मेड़ बहुत जरूरी है। मेड़ का करत है, एक तो मेड़ बंदी अपने खेत का परिधि बतावत है, सीमा बतावत है ना।
0: हाँ,
1: और दूसरी बात जो उपजाऊ मिट्टी है वो की रोकत है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो आपके खेत का, हमारे खेत का
0: उपजाऊपन
1: रहा था, और मेड़ अगर सुरक्षित रहे तो करे खातिर जरूरी है कि मेड़ पर पेड़ लगावा जाए,
0: बिल्कुल,
1: जोने
0: बिल्कुल।
1: से कि कटाव ना हो।
0: हाँ।
1: तो हर किसान भाइयों से ये तपती धूप में अरदास भैया हो, जैसे अपन प्रधानमंत्री जी भी कहने हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगावा जाए,
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: पर्यावरण के संतुलन के खातिर, अपने खेती किसानी के बचाव के खातिर,
0: हाँ,
1: जीव जंतु के बचाव के खातिर, और अपन आवे वाली पीढ़ी के
0: हाँ हाँ
1: सामान्य तापमान देवे के खातिर हमार तुहार रमेश्वर जानकी सबकर जिम्मेवारी है कि भैया
0: बिल्कुल,
1: पेड़ लगावा
0: बिल्कुल
1: जाए।
0: भैया। देखा आप, कुछ दिनों बाद जो है बरसात चालू हो जाए तो भैया अरे अपन खेत के मेड़ बंदी कर ले, हैं मेड़ सही कर ले, नहीं तो बारिश तेज भाई भैया, अगर तो जो इतना खाद और डाले बाटा है पता लगे दूसरे खेतों में बह के चला जाए।
1: सही बात।
0: हाँ,
1: बट
0: तो इसलिए भैया मेड़ सही कर ले और हर मेड़ में थोड़ा थोड़ा पेड़ लगा लिया भैया।
1: रघु भाई हो देखा अपने पंचायती में हमारे सभी रोज कुछ न कुछ लिया बजात है। आज अपने पंचायती में जौन पिटारा लिया हुआ गया बाटे,
0: बिल्कुल,
1: तो आज लोक भाषा कविता पाठ के दिन बाटे।
0: अच्छा,
1: ओके भैया समय से सुना जाए, लेकिन परंपरा तो यह है कि किसान भाइयों के स्वागत में हमारे सभी गीत गौने सुनवा जाते है। तो आज भैया विकास गीत बाटे,
0: हाँ,
1: प्रीतम सिंह और संघाती का,
0: अच्छा,
1: आवा किसान भाइयों के साथ हमारे सभी सुन लीजिए,
0: सुनवा दे भैया।

0: हाँ भैया देखा हो विकास गीत रहा कितना बढ़िया है ना
1: जी
0: मेरा हो किसान भैया। अब जोन बात बात कही होत रही भैया, आज के दिन हमारे सभी पंचायती में लोक भाषा कविता पाठ सुना जाते हैं
1: हाँ भैया
0: और लोक भाषा का कवि आवत हैं और अपन कविता पाठ सुनावत हैं। तो भैया हो शिवलाल केसकर का लोक भाषा कविता पाठ है,
1: अच्छा भैया
0: आवा किसान भाई इनके साथ हम लोग सभी सुन लीजिए।
1: सुनवा दे भैया।
2: हाँ पंचो, हमरे पहली कविता का शीर्षक है गर्भ से कन्या की करुण पुकार। ममू

अनपढ़ पढ़े जन सब ये सोच उपजावा, अनपढ़ पढ़े जन सब ये सोच उपजावा, घटिया सोच भेदभाव का दूर भगावा।

शिक्षा दिलावे आदर प्यार उपहारा, शिक्षा से बोली भाषा बदले व्यवहारा।

समान फलदायक शिक्षा से मिलल चौधरी से होवे गुण गान जी, सम्मानदायक फल।

शहर के सोचा लोगे लुगैया, शासन सरकार के भर सकू पैया, कौनो नायन पड़ रहा है देशवा के अंदर, निर्धन हो या हो धनवान जी, कौनो नायन पड़ रहा है देशवा के अंदर, निर्धन हो या हो धनवान जी, शिक्षा बनल बाए जुग का आधार, जौने जीवन में बाड़ा लावत सुधारा, शिक्षा बनल बाए।

यार भैया, जय पे मौज करे सारा संसार भैया, आज से नहीं आदिकाल से भाई, बन वृक्ष मानो में रही घोर मिताई, आज से नहीं आदिकाल से भाई, बन वृक्ष मानो में रही घोर मिताई, भाई मित्रन से करा क्यों तकरार भैया, भाई मित्रन से करा क्यों तकरार भैया।

गौआ किसान राखें गांव के किसान, जय के बलबूते दिखे खेत खरिहान, अन फल फूल सब्जी के भंडार होवता, अन्न फल फूल सब्जी के

0: हाँ भैया देखा
1: लोक भाषा कविता पाठ।
0: हाँ हाँ शिवलाल केसकर भैया रहे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि का खूब
1: विस्तार
0: कविता पाठ से भैया जोड़े रहे हैं हमारे सभी की। एक बात है हम कहें रघु भाई
1: भैया बोला,
0: देखा हो जौन मौसम विभाग के वैज्ञानिक लोग हैं, जौन पर्यावरणविद लोग हैं,
1: हाँ भैया,
0: जौन जलवायु विज्ञान का जानकार लोग हैं, वो लोग बता रहे थे कि भैया हो अगर यह स्थिति रहे तो तापमान तो धरती पर बढ़त जाए।
1: बिल्कुल।
0: और तापमान पर धरती पर अगर बढ़ रहा बाटे भैया तो निश्चित रूप से जाना कि जौन बड़े बड़े ग्लेशियर हैं,
1: हाँ भैया,
0: हिमखंड हैं, उनके पिघले में ज्यादा समय नहीं बाटे।
1: बिल्कुल।
0: और जब वो पिघली हैं, जब धरती का तापमान बढ़े तो ग्लेशियर अगर पिघलत हैं तो जौन जल क्षेत्र है पूरी दुनिया में,
1: हाँ हाँ
0: उनमें बढ़ोतरी हुए।
1: अच्छा।
0: और कहीं ना कहीं से ये जाना कि मानव जीवन पर पर्यावरण पर खतरा भी हो सकता है।
1: बिल्कुल भैया।
0: ये सब के खातिर भैया देखा एक तो वृक्ष लगावल जरूरी है, पर्यावरण का संरक्षण किन जाए।
1: बिल्कुल।
0: और पर्यावरण के संरक्षण के साथे साथे जो ना सबसे महत्वपूर्ण चीज है भैया कि कहा जाता है कि बिना जल के जीवन ना ही संभव है।
1: हाँ भैया।
0: तो जल का संरक्षण भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल भैया।
0: देखे में ये आवत है भैया कि अगर छोटे स्तर पर अपने गांव के स्तर पर देखा जाए तो हर घर में ट्यूबवेल है, ये
1: हाँ।
0: तो बहुत अच्छी बात है भैया कि नलकूप है, सिंचाई का प्रबंधन है, लेकिन ओकर उतना प्रयोग करे के चाहे जितना से कि हमारे सभी के सिंचाई का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। कोशिश ही रहे कि नाली विधि में नहीं, पाइप विधि से, स्प्रिंकल विधि से, छिटकवा विधि से, है ना, फव्वारा विधि से सिंचाई का व्यवस्था की जाए, जोने से कम भूमिगत जल का प्रयोग हो। भूमिगत जल का प्रयोग भी भैया बहुत सोच समझ के करे के चाहिए। दूसरी बात यह आवत है कि देखे में यह आवत है कि गांव की राव से ही अगर लिया जाए तो भैया हो ट्यूबवेल है तो खोल दिया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: अब चल रहा बाटे पानी कहाँ जाता है कोनो ओकर चिंता नहीं है। एक घंटा दो घंटा कोई ट्रैक्टर धोवत है, घंटा दो घंटा कोई भैंस गाय धोवत है।
1: बिल्कुल।
0: ये भी एक तरह से जल का अनुचित प्रयोग है।
1: हाँ भैया।
0: निश्चित मात्रा में भैया जल का निकासी की जाए और जितनी आवश्यकता हो ट्रैक्टर धोए में या पशुओं के धोए में उतने प्रयोग किया जाए।
1: भैया देखा आजकल हर घर में जो समरसिबल लगा बाटे हैं, जैसे भैया कहा जल के दुरुपयोग होते हैं, नहा के बाटे एक बाल्टी का तीन तीन चार चार बाल्टी निकाल ली, नहा बहा दिन फालतू में, ऐसे भैया जो है।
0: और एक साथे साथे भैया जो पुरान कहे में तनिको गुरेज ना है कि हमारे गाँव गिराव कहीं थी भैया हो, जौन पुरान जलाशय रहें, जौन पोखरी रहें, ताल तलैया रहें, मने ही कहा कि है कि भैया धीरे धीरे उके पाट दिया।
1: हाँ भैया।
0: तो भैया हो अब हम तो कहें कि अगर जल

0: नहीं है ताल तलैया में, तो बतावा चिरई चंगुल पशुपरानी कहाँ से जल पिए।
1: हाँ भैया हाँ।
0: तो भैया अपन सरकार भी में प्रगतिशील है, जौन जलाशय हैं उनके पुराने स्वरूप में लियावत है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आप किसान भाइयन के गांव में भी ऐसा कोनो समस्या है तो संबंधित ब्लॉक पर जाएं, संबंधित तहसील के बड़े अधिकारी से मिलें, अपन प्रार्थना पत्र दें। सरकार का ही मंशा है कि अपने
1: अच्छा
0: मूल रूप में वो गांव का ताल तलैया पोखरा जोन भी है ओके लिया जाए, ओके जल स्रोत के बढ़िया बनावा जाए। अपन सर्वोच्च न्यायालय चाहे माननीय उच्च न्यायालय भी समय समय पर ये तरह का विधि व्यवस्था दे रहा बाटे कि जोन भी जल स्रोत हैं, विशेषकर पुराने जल स्रोत हैं, ताल तलैया जोन है ना, और छोटी पोखरी है, बड़ी पोखरी है, अगर
1: हाँ भैया
0: केहू कभी गलत ढंग से ऊपर अवैध कब्जा है या केहू ओके पाट दिए है,
1: अच्छा,
0: तो ओकरे विरुद्ध कार्रवाई भी हो जाए और ओके मूल ढांचा के अपने स्वरूप में लावा जाए।
1: हाँ।
0: और संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान का सचिव का जिम्मेवारी है, सरकारी जिम्मेवारी है,
1: अच्छा अच्छा
0: कि वो जल स्रोत के फिर से जल के जौन है भरा जाए, जौन से कि जलीय जीवन भी जी सकें और जौन पशु पक्षी हैं, हमारे सभी का पशु हैं, उनके भी स्वच्छ और साफ पानी मिल सके। एकरे साथे साथे एक बात और है रघु भाई,
1: हाँ भैया
0: एक
1: बोला।
0: बात का भी ध्यान देवे की जरूरत है कि गांव का जौन जल प्रवाह है, गांव का जौन जल निकासी होता है,
1: अच्छा
0: वो
1: अच्छा
0: देखे में ये आवत है कि भैया पुराने ताल तलैया में ही जौन है नाली गिरा दी जाते है।
1: अच्छा।
0: तो सरकार एमें भी जागरूक हो गई बाटे। अब तो जौन जल सरोवर है, सरकार के एक योजना रही कि उनके अमृत जल सरोवर के रूप में विकसित किया जाए।
1: अच्छा,
0: बहुत से ग्राम पंचायत नया पंचायत में ये काम भी भवा बाटे। तो कहे का मतलब लब्बो लुआब ये कि जल संरक्षण बहुत जरूरी है। ओके सरकारी स्तर पर तो लोग देख ही रहा बाटे,
1: हाँ भैया,
0: मुला हमार तोहार रमेश्वर जानकी और याना की रघु भाई सबकर ही जिम्मेदारी है, आम आदमी का आम किसान भैया का जिम्मेवारी है कि जौन पुराने जलाशय हैं
1: हाँ।
0: उनका मूल रूप बना रहे, जौन ऐसे कि जल संरक्षण हमारे सभी के
1: बना रहे।
0: बना रहे।
1: कहा भैया देखा आप कुछ दिनों बाद जो है बरसात शुरू हो जाएगी भैया, तो भैया जो कुआ तालाब सूख गए बाटे ना, तो हम कई भैया आ रहे हैं साफ सफाई कर लें ताकि वही में जल संरक्षण किया जा सके है, ताकि
0: बिल्कुल सही कहा भैया। हो देखा जल संरक्षण तो बहुत जरूरी है। बताए ना कि कुछ फल फलत जौन है, कुल फसल जौन है,
1: हाँ भैया,
0: कुछ पेड़ पौधा जौन है बिना पानी के रह नहीं सकत है,
1: बिल्कुल
0: है ना, धान पान और केरा तीनों पानी के चेरा। तो अब देखा धान का फसल तो अब आ जाए ना 10-15 दिन में,
1: हाँ हाँ
0: तो उसमें खेत खेत का भैया तैयारी हो रही बाटे, माटी पलटने वाले हल से देखा पलटाई भी हो गई बा,
1: बिल्कुल,
0: जोन की कहा जाता है कि धान का जोन बिहन बिहन भी पड़ गई बाटे।
1: अच्छा,
0: और अब तो नई तकनीक आई बाटे कि भैया कुछ ओके कुछ दिन का हो जाते हैं, 21-22 दिन का, तो के निकाल के एक दूसरे जगह रोपित किया जाता है, तो तीसरे
1: अच्छा।
0: जगह फिर प्रत्यारोपित होता है खेत खलिहान में। तो हर किसान भाई अब धान के ऊपर लग गया बाटे,
1: अच्छा
0: धान
1: अच्छा
0: की फसल भी भगवान करें कि बरखा बढ़िया हो और
1: बिल्कुल
0: धान
1: बिल्कुल
0: का फसल हमारे सभी का लहलहाए। जब बात बत कही होते तो भैया यही बीच में मन तो ये करता है कि एक गौने और हो जाए,
1: हाँ भैया,
0: तो श्रीकांत बैस का गायक हरवा है,
1: हाँ,
0: आवा किसान भाई इनके साथ सुन ली जाए।
1: सुनवा दे भैया।
0: जय

0: बोले बाबा हो तुहरा के महिमा अपार।
1: बड़ा निक रहा
0: श्रीकांत बैस जी का, बहुत बढ़िया जोन है कारवा रहा।
1: हाँ भैया,
0: एक जोन है भक्ति गीत रही।
1: बिल्कुल भैया, सुन के
0: एक
1: मन
0: बात है भैया कि हमरे सभे समय समय पर तरह तरह के पंचायत घर में कार्यक्रम लिया हुआ जाते।
1: हाँ भैया,
0: और किसान भाइयन के खातिर जरूर कोशिश रहते कि कुछ नई चीज लिया हुआ जाए।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कार्यक्रम कैसन है एक प्रतिक्रिया भी आवश्यक है।
1: हाँ,
0: किसान भाइयों से ये अरदास बाटे, प्रार्थना बाटे कि हमारे सभी के कार्यक्रम कैसन लगत है, एकरे बारे में अपन प्रतिक्रिया जरूर दें, या कार्यक्रम में कौन संशोधन चाहत हैं।
1: अच्छा।
0: कौन समस्या है उनके, कौन उनका राय है, इस सब किसान भाइयों से उम्मीद है कि जरूर हमारे सभी के बतावें।
1: बिल्कुल,
0: खातिर हमारे सभी का एक विशेष नंबर है।
1: हाँ भैया,
0: अपन प्रतिक्रिया दें, अपन सुझाव दें,
1: हमारे
0: सभे पर जरूर ध्यान दिया जाए। हम कहें कि मोबाइल नंबर जोन है ओके नोट कर लें, 800-4926-250। हम कहें रघु भाई।
1: हाँ भैया,
0: किसान भाइयों से फिर से अरदास है कि एक बार फिर से ये नंबर नोट करें, 800-4926-250। ये नंबर पर किसान भाई अपन प्रतिक्रिया हमारे सभी के दे सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पंचायत घर कार्यक्रम में उनके प्रतिक्रिया का, उनके सुझाव का सदा सर्वदा स्वागत है।
1: हाँ भैया,
0: हम पंचायत घर के लोग जरूर उनके बात के अमल में लावा जाए और
1: हाँ
0: वो मुताबिक हमारे सभी जरूर सुधार की है का कोशिश की जाए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: भैया हो देखा समय समय पे तो सब ठीक लागत है।
1: हाँ भैया,
0: हम कहें कि गर्मी भी बढ़ रही बाटे और देखा भैया हो जौन पशुधन है ना उनके दूध निकाले के भी अब टाइम हो गई बाटे।
1: हाँ भैया,
0: तो पंच भाइयों से विदा लीन जाए, कल फिर पंचायती में भेंट हुए तो पंचो
1: राम राम,
0: राम, राम।

अभी हमारे ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रही थी पंचायत घर। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं संगीत स्वरों में ये देशभक्ति पूर्ण रचना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संबित स्वरूमी, ये देशभक्तिपूर्ण रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रादेशिक समाचारों का वक्त हो चला है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।
2: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
1: इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की CBI की जांच की मांग भी करेगा।
3: हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालतनामा दाखिल करने, अब चूंकि भीड़ है तो इस करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शील नागो की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आज 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
4: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
5: आज ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही है।
1: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने

0: अहमदाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, साथ ही लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीओ जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्लियरिटी न होने के कारण से एक भ्रम विस्तृत बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि साथ हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जीओ, उसको हम निरस्त करते हैं।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देश भर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ की अंतरिम राशि स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित यादव के भाई राहुल ने कहा कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए चुने जाने पर उनके पूरे गाँव में खुशी का माहौल है।
2: इस वाले गेम में क्वालिफाई मार्क था 77 पॉइंट कुछ था एशियन गेम्स के लिए, और वहाँ अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके 87.05 किए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें 2 लोग जाते हैं। वहाँ एक नीरज चोपड़ा, उनका ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था डायमंड लीग से, 85 पॉइंट कुछ किए थे, और यहाँ से रोहित यादव, 2 लोग जाएंगे एशियन गेम्स। हम तो खुश है, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था कि हाँ अच्छा हो, अच्छा हुआ, पूरा गाँव खुश है इस चीज से, क्योंकि काफी मेहनत किए थे उसके पीछे।
0: राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेरा फेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल

0: सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शशि शेखर पांडे की वार्ता, जिसका विषय है सोशल मीडिया के दौर में हिंदी भाषा के समक्ष चुनौतियां।
2: आज की हमारी चर्चा का विषय है सोशल मीडिया के दौर में हिंदी भाषा के समक्ष चुनौतियाँ। डिजिटल युग ने संचार की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। आज संवाद का सबसे सशक्त माध्यम सोशल मीडिया बन चुका है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्त के नए रास्ते खोले हैं। पहले जो संवाद किताबों, अखबारों और पत्रिकाओं तक सीमित था, वह अब हर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक पहुंच चुका है। यह स्थिति हिंदी भाषा के लिए भी अवसर भी है और चुनौती भी। भारत में सोशल मीडिया का प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 90 करोड़ के पार हो जाएगी। इसमें एक बड़ा हिस्सा हिंदी भाषी होगा। आज व्हाट्सएप पर सबसे अधिक बातचीत हिंदी भाषा में होती है। इसी तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हिंदी में पोस्ट लिखने और पढ़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन यह वृद्धि जितनी सकारात्मक है उतनी भाषा की दृष्टि से उतनी नकारात्मक भी है, क्योंकि हमारी भाषा हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे साहित्यिक भविष्य की गहराई से जुड़ी है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस भाषा का इतना विस्तार हो रहा है, वह अपनी आत्मा और सौंदर्य को बचा पा रही है अथवा नहीं। सोशल मीडिया की भाषा का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि शब्द एवं वाक्य संक्षिप्त होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए धन्यवाद की जगह अब TNX लिखा जाने लगा है, बहुत अच्छा की जगह GUD लिखा जाने लगा है और ठीक है की जगह सिर्फ ओके। इतना ही नहीं, इमोजी ने तो भावनाओं की गहराई को लगभग प्रतिस्थापित ही कर दिया है। अब आंसू बहाने का वर्णन करने के बजाय केवल एक इमोजी भेज देना पर्याप्त समझा जाता है। जब किसी भाव का चिन्ह ही भाव की व्याख्या बन जाए तो उसकी गहराई संदिग्ध ही होगी। वर्तमान समय में भाषा की व्याकरणिक संरचना का टूटना भाषा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हिंदी जैसी व्यवस्थित भाषा, जिसकी अपनी लय, प्रवाह और वाक्य विन्यास है, सोशल मीडिया पर टुकड़ों में बिखर गई है। सोशल मीडिया में मैं स्कूल जा रहा हूँ को मैं स्कूल जा रहा, वो किताब पढ़ रहा है को वो किताब पढ़ रहा, मैं रहा में RH लिख के बस काम चला लिया जाता है। इसमें व्याकरण का अनुशासन भी खो जाता है और भाषा की सौंदर्यपूर्ण ध्वनि भी। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी चुनौती है इस समय इंग्लिश भाषा, जो सोशल मीडिया की वर्तमान में सर्वप्रिय भाषा है। अब न तो पूर्णतः हिंदी लिखी जाती है, ना ही अंग्रेजी। हमारे वाक्य कुछ ऐसे हो गए हैं जैसे I am थोड़ा बिजी हूँ, या कल एक ऑसम आइडिया डिस्कस करेंगे। यह केवल भाषाई बदलाव नहीं है, अभी तो सांस्कृतिक संकट का संकेत है। इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जो भाषा अपना रस खो देती है वह अपना जीवन खो देती है। साहित्य पर भी इसका दुष्प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को लेखक बना दिया है, लेकिन इस उपलब्धता ने भाषा की मौलिकता को भी नुकसान पहुँचाया है। अब लोग कविता या कहानी इस चिंता में लिखते हैं कि उससे कितने लाइक मिलेंगे। इस होड़ ने गहराई की जगह सतहीपन को बढ़ावा दिया है। कभी हिंदी साहित्य में प्रेमचंद, निराला, महादेव वर्मा और दिनकर जैसे महान रचनाकार हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं से समाज को जागृत किया है, लेकिन आज की पीढ़ी उनके साहित्य से अपरिचित होती जा रही है।

रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की महत्ता पर लिखा है, साहित्य समाज का दर्पण है, पर यही दर्पण यदि धूमिल हो जाए तो प्रतिबिंब की कल्पना कैसे की जा सकती है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन आज की युवा पीढ़ी पर सटीक बैठता है। सोशल मीडिया पर आलोचना का स्वरूप भी बदल गया है। गहन विमर्श और विश्लेषण की जगह सतही टिप्पणियाँ जैसे वाह, शानदार या सुपर जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इससे विचार की गंभीरता और आलोचना की परंपरा कमजोर हो रही है। सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी पड़ा है। संवाद की संस्कृति का ह्रास हो रहा है। परिवार और मित्रों के बीच आमने सामने जो बैठकर बातचीत की जाती थी, अब उसकी जगह ग्रुप चैट्स ने ले ली है। दोस्ती अब लाइक और कमेंट से आंकी जाने लगी है। इसने रिश्तों की भावात्मक जुड़ाव जो भाषा के माध्यम से होता था, उसे निरंतर औनत के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया ने सूचना तो दी है, लेकिन साथ ही सूचना प्रदूषण भी फैलाया है। छोटे छोटे वाक्यों और भावात्मक भाषा ने

है। दोस्ती अब लाइक और कमेंट से आंकी जाने लगी है। इसने रिश्तों की भावात्मक जुड़ाव जो भाषा के माध्यम से होता था उसे निरंतर औनत के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया ने सूचना तो दी है लेकिन साथ ही सूचना प्रदूषण भी फैलाया है। छोटे छोटे वाक्यों और भावात्मक भाषा ने फेक न्यूज़ और अफवाहों को जन्म दिया है। आज बहस और तर्क की जगह आक्रामकता और पक्षपात बढ़ गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भाषा संबंधी एक विचार है। उन्होंने कहा है, शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि शब्द ही हैं जो अंततः समाज की नैतिकता तय करते हैं। सोशल मीडिया में प्रयोग होने वाली भाषा का मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। लाइक्स और कमेंट की भाषा ने युवाओं में असुरक्षा और चिंता को जन्म दिया है, क्योंकि अगर किसी भी पोस्ट पे गलत कोई कमेंट आ जाता है तो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। ट्रोलिंग और अपमानजनक भाषा ने मानसिक अशांति को बढ़ा दिया है। भाषा के आभासी संवाद ने युवाओं में अकेलापन, चिंता और असुरक्षा को जन्म दिया है। ये भाषाई चुनौतियों ने हमारे साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सभी को समान रूप से प्रभावित किया है, क्योंकि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं अपितु हमारी संस्कृति, परंपरा, विचारों का वाहक होती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है जो करोड़ों लोगों को जोड़ने वाली डोर है। सोशल मीडिया की भाषा ने एक ऐसी संस्कृति गढ़ी है जिसमें लाइक्स, शेयर और फॉलोअर्स ही आत्मूल्यांकन का पैमाना बन गए हैं। यह युवा मानस को चिंतित और अस्थिर बना रहा है। सकारात्मक और प्रेरणादायक भाषा की जगह तंज, व्यंग और नकारात्मकता बढ़ रही है। एक चुनौती यह है कि अलग अलग पीढ़ियों के बीच संवाद कठिन होता जा रहा है। बुजुर्ग पारंपरिक हिंदी के अभ्यस्त हैं तो युवा वर्ग संक्षिप्त रूपों जैसे इमोजी और हिंग्लिश का प्रयोग का समर्थन करता है। इससे पीढ़ियों के बीच जो भाषाई खाई है वो और चौगुणी होती जा रही है। पहले की पीढ़ियों में बचपन से ही दादा दादी, नाना नानी के किस्से, लोक कथाएँ और रेडियो पर प्रसारित नाटकों, कविताओं के माध्यम से भाषा का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ाया जाता था, परंतु आज यह कहीं भी दिखाई नहीं देता है। नई पीढ़ी इन कहानियों, कविताओं के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों से अनभिज्ञ है। उनके लिए ये भाषा प्रासंगिक ही नहीं रह गई है। किसी भी वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होगी वह उतना ही फल फूल सकेगा। यही उक्ति समाज पर भी लागू रहती है। बिना भाषा के समाज भी अपनी संस्कृति को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। सोशल मीडिया हमारी भाषा की जड़ों को कमज़ोर कर रहा है। हिंदी भाषा के समक्ष जितनी चुनौतियाँ खड़ी हैं उतनी संभावनाएं भी हैं। इन चुनौतियों को केवल संकट की तरह नहीं देखना चाहिए बल्कि इन्हें एक अवसर की तरह देखना चाहिए। सोशल मीडिया ने हिंदी को पहले से कहीं अधिक वैश्विक मंच दिया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को पढ़ा एवं सुना जाता है। पहले हिंदी में कोई भी लेख, कविता या कहानी छपवाने के लिए पत्रिकाओं का इंतज़ार करना पड़ता था, पर वहीं अब लेखक सीधे ब्लॉग और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पाठकों तक सीधे से पहुंच पा रहे हैं। हमें भाषा की शुद्धता एवं उसको महत्व को बचाने एवं अक्षुण रखने के लिए अपनी शिक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने होंगे। स्कूलों में केवल व्याकरण और निबंध तक भाषा शिक्षण को सीमित किया जाए ऐसा कुछ निश्चित नहीं होना चाहिए, अपितु उसे डिजिटल लेखन, ब्लॉगिंग और पत्रकारिता के माध्यम से नए आयाम पे पहुंचाना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि संक्षिप्तता जरूरी है लेकिन भाषा की गरिमा को खोकर नहीं। कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर डिजिटल हिंदी अध्ययन जैसी कक्षाओं की शुरुआत होनी चाहिए। भाषा के सोशल मीडिया में सूक्ष्म, शुद्ध एवं विस्तृत प्रयोग होती बेहतर टाइपिंग टूल्स तैयार करने चाहिए और इंग्लिश के स्थान पर शुद्ध हिंदी को प्रोत्साहित करना होगा। हिंदी बोलने वाले एवं लिखने वाला हर भारतीय अगर यह ठान ले कि वह सोशल मीडिया पर कम से कम 50% सामग्री शुद्ध हिंदी में लिखेगा तो स्थिति में तेजी से सुधार हो सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, भाषा वही जीवित रहती है जो अपने समय की चुनौतियों को स्वीकार करती है। भाषा केवल शब्दों का जाल ही नहीं अपितु संस्कृति की वाहक है। हमारे त्योहारों, लोकगीतों
और लोक कथाओं को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करके

0: हिंदी भाषा को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करना होगा। जब युवा महसूस करेंगे कि शुद्ध हिंदी मात्र किताबों की भाषा नहीं अपितु जीवन जीने का एक तरीका है, तभी वे इसे पूरी आत्मीयता से आत्मसात कर पाएंगे। अंत में यह हम समझें कि भाषा का भविष्य केवल तकनीकी मंचों से तय नहीं होता है, बल्कि उससे तय होता है कि समाज उसे किस दृष्टि से देखता है। सोशल मीडिया ने हिंदी भाषा को कई तरह की चुनौतियाँ दी है, जैसे संवाद में गहराई का अभाव, व्याकरण का टूटना, इंग्लिश भाषा का जन्म, साहित्य एवं साहित्यिक भाषा से दूरी, सामाजिक विमर्श का पतन। लेकिन सोशल मीडिया में हमें कुछ अवसर भी दिए हैं, जैसे हिंदी का वैश्विक प्रसार, नवीन लेखकों का उदय, साहित्य की पहुंच में वृद्धि और भाषा के डिजिटल युग से जुड़ने की संभावना। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम हिंदी को आधुनिकता से जोड़ें, पर उसकी आत्मा को अक्षुण्ण बनाकर। महादेव वर्मा ने कहा था, भाषा केवल ध्वनियों का समूह नहीं है, वह हृदय की अनुकंपा है। यदि हम अपनी भाषा को हृदय से जीवित रखेंगे तो तकनीकी साधन उसे और मजबूत ही करेंगे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भाषा का भविष्य केवल किताबों, स्कूलों या सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार से तय होता है। जब हम अपने मित्र से हिंदी में आत्मीय बातचीत करते हैं अथवा जब हम अपने विचारों को हिंदी में दर्ज करते हैं, तब हम इस बात के को पुष्ट करते हैं कि भाषा की जड़ें और भी मजबूत से मजबूत होंगी। हिंदी की शक्ति उसकी सहजता और आत्मीयता में है। अंग्रेजी या अन्य भाषाएं ज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण अवश्य हैं, परंतु हिंदी हमारी भावनाओं, हमारे संस्कारों और हमारी पहचान की भाषा है। आज हमें यह स्वीकार करना होगा कि आधुनिकता और वैश्वीकरण से बचना संभव नहीं है, परंतु उनमें अपनी भाषा को समाहित करना पूरी तरह संभव है। हमें यह तय करना होगा कि सोशल मीडिया पर हम हिंदी को सतही प्रयोग तक ही सीमित करेंगे या उसे गहन और विचारशील संवाद का माध्यम बनाएंगे। भविष्य की पीढ़ियां वही भाषा अपनाएंगी जो उन्हें आधुनिक जीवन के साथ साथ सांस्कृतिक आत्मगौरव भी दे सके। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी को केवल बोलचाल की भाषा न मानकर उसे ज्ञान, साहित्य, तकनीक और विचार का माध्यम बनाएं। अंत में यही कहना उचित होता है कि यदि आज हम सजग नहीं हुए तो कल बहुत भयावह होगा हिंदी भाषा के लिए, लेकिन यदि आज हम प्रयास करें तो आने वाले दिनों में हिंदी न केवल भारतीय समाज को जोड़ने की शक्ति बनेगी, बल्कि विश्व स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगी। वीवी गिरी ने कहा है, हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना ही व्यर्थ है। अतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी एक भाषा मात्र न होकर हमारी अस्मिता की मूल पहचान है।
1: सोशल मीडिया के दौर में हिंदी भाषा के समक्ष चुनौतियां। आज के हिंदी कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर शशि शेखर पांडे की ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी प्रयागराज का प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज के साथ साथ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर भी आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आप हमारे कार्यक्रम कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है आपके लिए। दिनांक 30 जून यानी कल 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डायटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे के मध्य हमारे फोन नंबर 0532-2970462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकती हैं। फोन नंबर हम आपको एक बार फिर बता दें, 0532-2970462 और 0532-242-3649। इसके अलावा आप अपने प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926

50 पर भी भेज सकती हैं। सूचना समाप्त हुई। स्टूडियो की घड़ी में 7:45 हो चुके हैं। वक्त हो चला है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार हैं करिश्मा। इनके स्वर में हम आपको एक दो भक्ति रचनाएं सुनवाने जा रहे हैं। प्रोग्राम का आरंभ कर रहे हैं अमीर खुसरो के लिखे इस भजन के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और हमारी कलाकार हैं करिश्मा। प्रोग्राम के आखिर में इनके स्वर में हम आपको अभिलाषा जी का लिखा ये भजन सुनवाने जा रहे हैं।

अभिलाषा जी के लिखे इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार थी करिश्मा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आकाशवाणी प्रयागराज से प्रसारित हमारी विविध रंगी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। थोड़ी देर में हाजिर होते हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम लेकर।

0: किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल यानी 30 जून को हिंदी सिनेमा के महान संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह का जन्मदिन है। आज उनकी जन्मदिन की पूर्व संध्या पर चितपट संगीत का ये विशेष कार्यक्रम हम उन्हीं के नाम कर रहे हैं। 30 जून 1928 को गुजरात के कच्छ में जन्मी उस फनकार की बात करेंगे जिसने उधारी की बदली संगीत सीखा और फिर पूरी दुनिया को अपने सुरों का कर्जदार बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के कल्याण जी भाई की। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है उनके यादगार नगमों को। तो चलिए सुरों की इस महफिल का आगाज करते हैं एक ऐसी नगमे से जो मोहब्बत का दस्तावेज बन गया। साल 1973 फिल्म ब्लैकमेल, विजय आनंद का निर्देशन, धर्मेंद्र और राखी की जोड़ी, राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल और किशोर कुमार की वो आवाज जो सीधे दिल में उतर जाती है।

ने इस गाने ने गिटार और बांसुरी का ऐसा संगम किया कि ये गीत एवरग्रीन हो गया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए भी नामांकन मिला।

श्रोताओं, कल्याण जी भाई कहा करते थे कि संगीत सिर्फ कान से नहीं दिल से सुना जाता है। 1965 में जब निर्माता मनोज कुमार ने उपकार के लिए उन्हें चुना तो उन्होंने देशभक्ति की नई धुन दे दी। इंदिवर साहब के बोल और महेंद्र कपूर की बुलंद आवाज, ये गाना आज हर हिंदुस्तानी की रूह में बसता है।

कल्याण जी आनंद जी की खासियत थी विविधता, यानी एक तरफ उपकार का जज्बा, दूसरी तरफ फिल्म कोरा कागज का दर्द। 1974 की यह फिल्म विजय आनंद का निर्देशन, जया भादुड़ी का अभिनय, एमजी हशमत के लिखे। इस गीत में लता मंगेशकर की आवाज में वो टीस है जो सीधे दिल को छू

साथियों, 1960 की फिल्म छलिया से कल्याण जी आनंद जी को पहचान मिली। राज कपूर और नूतन पर फिल्माया ये गाना आज भी उतना ही ताजा है। काजी नजरुल इस्लाम के बंगाली गीत से प्रेरित मुकेश जी की आवाज में सुनते ही

1928 को जन्मी कन्या जी भाई ने 24 अगस्त 2000 तक 72 साल की जिंदगी में 200 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। कल उनका जन्मदिन है और आज इस पूर्व संध्या पर हम उन्हें याद कर रहे हैं उनके द्वारा संगीतबद्ध डब्बों के जरिए। उनकी कला को भारत सरकार ने 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया। फिल्म कोरा कागज के अलावा सरस्वती चंद्र और ब्लैकमेल जैसी फिल्मों के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर नामांकन मिले। कल्याण जी वीर जी एंड पार्टी के नाम से उनका ऑर्केस्ट्रा देश विदेश में मशहूर हुआ।

श्रोताओं, 24 अगस्त सन 2000 को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, पर उनके सुर आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। उधारी के बदले मिले संगीत का उन्होंने दुनिया को सूट समेत लौटाया। चित्रपट संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल 30 जून को कल्याण जी भाई के जन्मदिन पर आकाशवाणी प्रयागराज और सभी सुधी श्रोताओं की ओर से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रोताओं, आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर जरूर बताइएगा। और अब अपने रेडियो साथी संतोष श्रीवास्तव को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी पर। इस प्रोग्राम के तहत हमने आपको जिन फिल्मों की गाने सुनवाई उनके नाम थे ब्लैकमेल, उपकार, डॉन, छलिया, सरस्वती चंद्र, मुकद्दर का सिकंदर, कोरा कागज और सफर।

हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, कल शाम 6:30 से आपको सुनवाएंगे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मध्य ओवल लंदन इंग्लैंड में खेली जाने वाली आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट के प्रथम सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2026 के मैच का आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम 6:30 से 7:20 तक, फिर 7:31 से 8:45 तक और अंत में 9:30 से खेल की समाप्ति तक।

कल दिन में 1:15 पर हेलो पनघट कार्यक्रम का प्रसारण होगा। कल के इस कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। श्रोता अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक हमारे फोन नंबर 0532-2970462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं।

कल के शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर और दोपहर 12:15 पर भास्कर दास का बांसुरी वादन सुनवाया जाएगा। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रही थी। से थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं पर फिर फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर।

श्रोताओं एक बार फिर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। कौसर मुनीर की रचना है, अमित त्रिवेदी का संगीत है और फिल्म का नाम है

श्रेया घोषाल, स्वरूप खान और साथियों की मिली जुड़ी आवाजों में अभी आप सुन रहे थे संजय लीला भंसाली के संगीत निर्देशन में ए.एम. तुरास का लिखा ये गाना। फिल्म का नाम था पद्मावत।

और श्रोताओं, प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिल्म जॉली LLB 2 की स्कवाली के साथ सुखिंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफ़ा और साथियों की मिलीजुली आवाज़ें, जुनैद वासी की रचना है और विशाल खुराना ने संगीत तैयार किया है।

सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफ़ा और साथियों की मिलीजुली आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जॉली एलएलबी 2 की ये कव्वाली, जुनैद वासी की लिखी और विशाल खुराना ने इस फिल्म के लिए संगीत दिया था। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को ही वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या का अब से थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी।

0: पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के

0: अंतर्गत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है में दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय

0: की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूजोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says, 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. वेस्ट बंगाल असेंबली

0: पर फौजी हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुस से तिजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुजाकिरात का एक नया दौर कल कतर की राजधानी दोहा में होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की थी और ये मीटिंग दोहा में होगी, ताहम उन्होंने मुजाकिरात के एजेंडे या दोनों ममालिक की नुमाइंदगी की सतह के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑपरेशन एमिस्टेड के तहत जलजले के मुतासिर वेनेजुएला में तैनात भारतीय फौज का फील्ड अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है। वेनेजुएला में भारतीय सिफारतखाने ने कहा कि तजुर्बेकार डॉक्टरों पर मुश्तमिल भारतीय तिब्बी टीम ने कराकस में इंटरनेशनल ला रिंकोना डा रेस्ट्रेक पर एक कैंप कायम किया है। उसने कहा कि मेडिकल कैंप अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और खिदमात 24 घंटे खुली रहती हैं। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरला और माहे में कल शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 रोज के दौरान उड़ीसा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली टीमों में शामिल हो गई है। ताहम मर्दों की टीम को बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए रवा साल के अख्ताम तक आईसीसी की मर्दों की टी20 की रैंकिंग में एशिया की सबसे आला दर्जे की टीम बनना होगा। बैन अलाक्वामी क्रिकेट काउंसिल ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत ऑस्ट्रेलिया बर्तानिया और जनूबी अफ्रीका ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में खवातीन टी20 मुकाबलों में अपनी जगह यकीनी बना ली है। यूएस ओपन बैडमिंटन में भारतीय सरकर्दा खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में चीनी ताइपे के सूली यांग से हार गए और उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इस हार में बीडब्ल्यूएफ के खिताब के लिए श्रीकांत के इंतजार को और बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने 2017 में बीडब्ल्यूएफ सुपर सीरीज के दौरान फ्रेंच ओपन में अपना आखिरी बैन अलाक्वामी खिताब जीता था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अदा किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकत दारी अब जिद्दत तराजी पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ्फुज और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों जैली हिमालयाई बंगाल बिहार महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुति कार्यक्रम गजलों की कहकशा। सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का आदाब। प्रस्तुति कार्यक्रम गजलों की कहकशा। साथियों, गजल एक ऐसा समंदर जिसमें मोहब्बत की लहरें भी हैं और जुदाई का तूफान भी। हिंदी सिनेमा ने इसे पर्दे का नूर दिया तो गैर फिल्मी दुनिया ने इसे महफिलों की जान बनाया। आज की इस कहकशा में 5 ऐसे नगमे चुनकर हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां फिल्म और एल्बम का फर्क मिट जाता है। बस्ती।

ये सिर्फ गजल की रूह। 1962 की फिल्म अनपढ़, फिल्मी गजल के स्वर्ण युग की शुरुआत। राजा मेहंदी अली खान का लिखा, मदन मोहन का सजाया और लता मंगेशकर का गाया ये नगमा। इश्क का पहला इकरार, अदब की चादर में लिपटा हुआ। माला सिन्हा पर फिल्माई गई ये गजल आज भी हर आशिक की जुबान पर है।

श्रोताओं, अब रुख करते हैं महफिल की तरफ। नसीम अजमेरी की कलम से निकली ये नायाब गजल भूपिंदर और मिताली सिंह की आवाजों का जादू है।

श्रोताओं, 19वीं सदी के उस्ताद शायर दाग देहलवी का कलाम और आवाज चित्रा सिंह की। इश्क का वो मुकाम जहां मिलने की खुशी और बिछड़ने का गम एक हो जाती ही। चित्रा जी ने इस क्लासिकल गजल में ऐसी जान डाली कि दाग साहब सुनते तो वाह वाह कर उठते। गजल गायकी की पाठशाला है ये नगमा।

और दोस्तों अब बारी गजल की शहंशाह है जगजीत सिंह साहब की। जावेद अख्तर का लिखा और जगजीत सिंह जी का गाया सजाया ये नगमा उनके एल्बम सोच से है।

टूटी हुई आशिक का आखिरी ऐलान। जगजीत जी की आवाज का दर्द सीधा दिल में उतरता है। 80 के दशक की सबसे मार्मिक गजलों में से एक है ये।

हर्षोत्तम, प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाने जा रही हैं साहिर लुधियानवी का कलाम मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म हम दोनों की ये गजल। जिंदगी से हारे हुए इंसान की दास्तान, जयदेव का संगीत और रफी साहब का दर्द। देवानंद पर फिल्म आया ये नगमा हर शख्स का हमदर्द है जिसने तन्हाई देखी है। फिल्मी गजल का एक और नायाब हीरा।

दोस्तों, गजनी चाहे फिल्मी हो या गैर फिल्मी, अदब की जुबान हमेशा एक ही रहती है। मदन मोहन से जयदेव तक, लता मंगेशकर से जगजीत सिंह साहब तक, आवाजें बदली, अंदाज बदली, पर गजल का मिजाज नहीं बदला। इसने हमें इश्क करना सिखाया और इश्क में फना होना भी। इसी के साथ गजलों की कहकशा यही खत्म होती है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो हम सफर संतोष श्रीवास्तव को। शब्बा खैर।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर। बस थोड़ी कीजिए प्रतीक्षा।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडिया वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। रात का ये पहर जब शहर की रफ्तार थकने से लगती है और दिल की धड़कनें साफ सुनाई देने लगती है, शुरुआत करती है 1949 में आई फिल्म दुलारी की इस गाने के साथ, जो हर सुहानी रात का अनकहा दस्तूर।

नौशाद साहब का जादू और रफी लता जी की जुगलबंदी। न जाने तुम कब से इस राह से गुजरती हो, जब रात ढली और कोई अपना इंतजार में हो तो यही गीत लबों पर आता है।

रात का जिक्र हो और चांद का न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। शैलेंद्र के बोलों को सुरों में पिरोया है किशोर कुमार और आशा जी ने।

अश्रुतों अब चलते ही 1971 में प्रदर्शित उस फिल्म की ओर जिसमें आर डी बर्मन साहब का संगीत थे और किशोर कुमार की मस्ती भी साथ थी। रात, सड़क और एक हमसफर।

ख्वाब में भी जब कोई मिलने आए तो रात सुहानी न हो तो क्या हो। किशोरदा की शरारत भरी आवाज भी रात भी मुस्कुराने लगती है।

हर रात खुशनुमा नहीं होती, कुछ रातें इंतजार की होती हैं तो कुछ तन्हाई की। 1964 में आई फिल्म वो कौन थी, मदन मोहन का दर्द और लता जी की आवाज।

शायद इस जन्म में मुलाकात न हो। जब रात ढल रही हो और जुदाई का डर हो तो दिल से बस यही आवाज निकलती है।

अब जरा नई सदी में आते हैं। 2012 की फिल्म बर्फी, प्रीतम का संगीत, रात, बारिश और एक खामोश मोहब्बत।

तो श्रोताओं, कुछ राती रफी साहब की, कुछ किशोर दा की, कुछ लता जी की और कुछ अरिजीत सिंह की, पर हर रात सुहानी है अगर गीतों का साथ हो।

रात भर करवटें बदलती रही। नई पीढ़ी की बेचैनी नए जमाने का इश्क, पर जज्बात वही पुरानी। अरिजीत सिंह की आवाज में आज की रात भी सुहानी है।

तो श्रोताओं, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर भेंट होगी रात के किसी और पहलू के साथ। तब तक चांदनी ओढ़कर सो जाइए और गीतों को सुनहरे ख्वाबों में आने दीजिए। इसी के साथ अपने रेडियो साथी संतोष श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे। कृपया हमारे अगले प्रसारण के कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

यूरियम एक 202.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री उमा शंकर मिश्र का राग हेम विहाग में सितार वादन सुनवाने जा रहे हैं। आपके साथ तबले पर संगति की है लतीफ अहमद खान ने। तो आइए सुनते हैं श्री उमा शंकर मिश्र का राग हेम विहाग में सितार वादन।

शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में अभी आप सुन रही थी पंडित उमा शंकर का राग हीम विहाग में सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगति कर रही थी लतीफ अहमद खान। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में। बस थोड़ी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी

0: ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of our armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudha Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudha Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudha Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dikshit. Recipients of the Uttam Yudha Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
3: Visit. Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of